ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में होंगे समाचार हिंदी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें

0: जनता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यवेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
2: मिल सकते हैं, ये है विविध भारती वंदन वार।

चिंतन। बालगंगाधर तिलक का कथन है, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। भक्ति संगीत।

0: सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीत हर रोज सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। आलस भरी भोर कोई कहे आपसे दुलार के, हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के।
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ। हर सुबह आपकी अपनी विविध भारती की आवाज, सुबह 8:30 पर चित्र लोग। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य जवानी जो शहीद।

तिरंगों की तल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 217। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, गज तत्ववाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। ये कार्यक्रम आप शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 बजे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष। आज 32वीं कड़ी, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है अभिनेत्री श्यामा पर। ये कार्यक्रम आप रात 9:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश। 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, अंजलि की कहानी सुनिएगा। कहानी सुनिएगा अंजलि, लेखक है अरगवान अपी। छाया गीत शाम 5 बजे। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन सुनिएगा। शाम 7 बजे जय बाला। 7:45 पर गुल

रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका सफेदी के पेड़। लेखक रेवती सरन शर्मा, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें कि सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। नौ बजकर तीस मिनट पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री श्यामा पर।

10 बजे चाहे गीत होगा, 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात, रात्रि 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। ये था लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्री राम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: रहे थे श्री रामचरित मानस का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: सतरंगी सरिता के अंतर्गत आज से हम आपको सुनवा रहे हैं गज वाद्यों पर आधारित श्रृंखला गज तत् वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इसकी पहली कड़ी।
1: नमस्कार। भारतीय संगीत में गज वाद्यों की अपनी परंपरा रही है। गज, जिसे अंग्रेजी में बो कहा जाता है, प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य के नाम से संबोधित किया है, किंतु 20वीं शताब्दी के कतिपय लेखकों ने प्रहार से वादन किए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य और गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को वितत्वाद्य की संज्ञा प्रदान की है। गज वाद्यों को वितत कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथों में अवनद्य वाद्य को वितत वर्ग के अंतर्गत बताया गया है। इसलिए इसे गजवाद्य कहना या गजतत्वाद्य कहना अधिक उचित प्रतीत होता है, जिससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि वे वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं और उन्हें गज से घर्षण करके बजाया जाता है। गजवाद्यों की यह विशेषता है कि इन वाद्यों द्वारा एकल वादन अर्थात सोलो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और

वाद्यों से साथ संगत भी अच्छी तरह की जाती है। इतना ही नहीं, इन वाद्यों का वाद्य वृंद में बहुत प्रयोग किया जाता है। वर्तमान भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस वर्ग के वाद्यों में वायलिन, सारंगी, इसराज, दिलरुबा, तार शहनाई आदि वाद्य प्रचलित हैं। श्रोताओं, आज हम सर्वप्रथम वायलिन वाद्य की चर्चा करेंगे। वर्तमान में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संगीत में वायलिन ने अब अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। वायलिन को उत्तर भारत में बेला नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि रावण हस्त वीणा लंकाधिपति रावण द्वारा बनाई गई थी, जिसके दो तारों को गज से बजाया जाता था। संगीत सुधाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत राज आदि ग्रंथों में गज से बजाई जाने वाली पिनाकी वीणा का वर्णन उपलब्ध होता है, किंतु यह स्वीकार करने में हमें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि वर्तमान वायलिन पाश्चात्य देशों की ही देन है। वायलिन का आविष्कार किसने किया, यह आज भी एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ विद्वान गास्पर ट्विफो प्रगर को वायलिन का आविष्कारक मानते हैं। कुछ चिंतकों का चिंतन है कि वायलिन को क्रिमाना के आंद्रे आमाती ने बनाया। कुछ गुणीजनों का विचार है कि वायलिन का निर्माण गैस्पारो बर्तलोत्ती अर्थात गैस्पर द सालो द्वारा किया गया है। कुछ जानकार वायल से वायलिन की उत्पत्ति मानते हैं और कुछ संगीतज्ञों का मानना है कि वायलिन का विकास रिबेक और रबाब वाद्य के आधार से हुआ है। इसका आविष्कारक भले कोई भी हो अथवा किसी वाद्य से इसका विकास हुआ हो, पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वायलिन ईस्वी सन 1505 से 1530 तक निर्मित हो चुका था। भारत में वायलिन का प्रयोग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हो रहा है। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय श्री बालू स्वामी दीक्षित जी को दिया जाता है। उत्तर भारत में वायलिन का शास्त्रीय संगीत में प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। श्री पी ए सुंदरम अय्यर, श्री गगन बाबू, बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां, श्री बलवंत सिंह हुगुन आदि कलाकारों द्वारा वायलिन पर उत्तर भारतीय संगीत को प्रस्तुत किया गया। सच पूछा जाए तो इन्हीं कलाकारों द्वारा वायलिन की लोकप्रियता का श्री गणेश हुआ। तत्पश्चात श्री वी जी जोग, पंडित गजानन राव जोशी, श्री डी के दातार, श्री एम एस गोपाल कृष्णन, डॉक्टर श्रीमती एन राजम, श्री शिशिर कणाधर चौधरी और श्रीधर पारसेकर आदि कलाकारों द्वारा वायलिन का केवल प्रचार ही नहीं बल्कि इनके द्वारा इसकी वादन तकनीक को भी अत्यंत समृद्ध किया गया। तो आइए सुनते हैं पीडी सप्तऋषि जी का वायलिन वादन। राग है जौनपुरी।

गजतत्वाद्य गजवाद्यों पर आधारित श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके नींद हर रोज सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। आलस भरी भोर कोई कहे आपसे दुलार के, हर रोज सुबह 7:30 बजे हम है राही प्यार के।
1: हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह, आपकी अपनी विविध भारती की आवाज। सुबह 8:30 पर चित्रलोक। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री को जो अपनी शोखी के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम है श्यामा। सन 1954 फिल्म भाई भाई, सन 1956 फिल्म भाई भाई। श्यामा की चंदंग में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में है।

पहली फिल्म का गाना गीता रॉय की आवाज में था। राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत मदन मोहन का था। एक बार फिर आ रही है गीता रॉय की ही आवाज। मजरू सुल्तानपुरी ओपी नैयर फिल्म आर पार।

फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत चित्रगुप्त का था। विविध भारती से आप बोले बिसरे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं अब आपको बता देते हैं हमारे आज के कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। प्रातः के 7:30 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 से कार्यक्रम सुर संगम। 8:30 से कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इसमें आज हमारी बात का विषय होगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। साथ ही सुनेंगे सर्पों की अनोखी दुनिया एक विहंगम दृष्टि इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे प्रशांत कुमार सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान साकेत महाविद्यालय अयोध्या। नौ बजे से होगा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 से सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 11:55 से। दोपहर 12:30 से अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। 1 बजे से कार्यक्रम कुछ तुमने कहा और 2 बजे से गीतांजलि।

2:30 का समय होगा कार्यक्रम अंगना का। इसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। शिक्षा और प्रेम से सवारों बचपन, स्वयं, समाज और राष्ट्र के लिए बाल श्रम पर आधारित इस विषय पर वार्ता सुनिएगा। वार्ताकार होंगी अध्यापिका अनामिका मिश्रा। तीन बजे से सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5 बजे से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत चर्चा होगी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। स्थान में जानेंगे गंगटोक सिक्किम के बारे में और होगी शब्दावली।

लोक संगीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे 5:30 से, शाम सुहानी 6:10 से, गुर्जे स्वर गांव के 6:30 से, 6:45 का वक्त होगा कार्यक्रम कृषि जगत का। इसके अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। साथ ही सुनेंगे भेंटवार्ता, भूमि परीक्षण आधारित पोषण प्रबंधन रणनीतियां धान की फसल के लिए। इस विषय पर डॉक्टर रॉबिन कुमार, सहायक प्राध्यापक मृदा एवं कृषि रसायन विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र एवं कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से भेंट करेंगे आलोक गुप्ता। रात्रि 8:15 से सुनिएगा गीत गुंजन महफिले गजल, 9:15 से और 9:30 से एक बार पुनः होगा कार्यक्रम हेलो अयोध्या। श्रोताओं, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। थोड़ी देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

0: पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़ी वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, कहा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात, कहा प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा प्रशासक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
4: The topic for the Governing Council meeting.
5: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश भी प्रत्येक

0: नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
1: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय रहते सटीक चेतावनी उपलब्ध होने से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
2: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश सेवा में 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लखनऊ के लोक भवन सभागार में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के साथ संवाद करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। अयोध्या में कल हुए होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर डीजी होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि होमगार्ड से जुड़ी जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
4: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ टाइप सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर

0: खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रदेश के अमरोहा, पीलीभीत और गाजियाबाद सहित कुछ अन्य जिलों में बीती रात बारिश होने से लोग उमस भरी गर्मी से राहत में हैं। पीलीभीत में आज सुबह भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में कल दिन भर बादल छाए रहे। वहीं बस्ती जिले में कल रात आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्पर के जलने की सूचना है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात। कहा, प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
4: प्रादेशिक समाचार के बाद एक बार पुनः आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे। हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कॉल करें 94532211909।
2: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
3: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत है अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत है फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
3: और व्हाट्सएप नंबर 8303211 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
4: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

0: आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com। भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
2: योग करिए, निरोग रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। अब से थोड़ी देर में होंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
2: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50

0: 50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को

0: वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
2: We signed this year a free trade agreement with Europe.
3: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
5: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया, तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ, हमारे रिलेटिव्स और देशवासी को।

0: लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हो।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे।

0: दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोक सत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट

0: 101.9 FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: कार्यक्रम सुरसंगम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
2: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
2: कॉल करें 6386907006।
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
4: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को सविता का नमस्कार। श्रोताओं, बचपन हर बच्चे का मौलिक अधिकार है जिसमें उनको शिक्षा और खेलने कूदने का मौका मिलता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति जहां बच्चों को जब ऐसे कामों में लगाया जाता है जो कि उनका बचपन छीन लेते हैं, उनकी क्षमता और गरिमा को कम करते हैं, साथ ही उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा डालते हैं, तो फिर ये मामला बाल श्रम के अंतर्गत आता है जो कि बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसे तरह के अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा साल 2002 में की गई थी। तब से हर साल 12 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक सीमा पर ध्यान केंद्रित करना और बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो भी आवश्यक प्रयास हैं उनको पूरा करना है। श्रोताओं, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उम्र के अनुरूप कठिन काम करना जिसमें गरीबी का सबसे पहला स्थान है, इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा, सस्ता श्रम, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अनिच्छुक माता पिता, इसमें वे माता पिता आते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल के बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते हैं ताकि परिवार के लिए कमाई हो सके, ऐसे तमाम कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। श्रोताओं, अपने देश में शुरू से ही बच्चों को भगवान के रूप में देखा जाता है और माना भी जाता है, लेकिन बात करें अगर वर्तमान समय की तो इस सोच से काफ़ी अलग जो है थोड़ी सी दिखाई देती है। ऐसे गरीब बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है, वे इन सबसे दूर हैं, जो कि गलत है। ये गलत है उनके लिए और उनके भविष्य के लिए। तो बाल श्रम को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जो कि ठोस और प्रभावी हों, और इसमें से कुछ कदम ऐसे हैं जैसे कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, जागरूकता बढ़ाना और सख्त कानूनों का पालन करना, जो कि बाल श्रम को रोकने के लिए बने हुए हैं।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं वार्ता। विषय है सर्पों की अनोखी दुनिया, एक विहंगम दृष्टि। वार्ताकार हैं श्री प्रशांत कुमार, सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान, साकेत महाविद्यालय, अयोध्या।
1: सर्प सरीसृप वर्ग के रीढ़धारी जीव हैं, जिनका विकास आज से लगभग 10 से 14 करोड़ वर्ष पहले छिपकली जैसी प्रजातियों से हुआ था। ये जीव अंटार्कटिका और कुछ गिने चुने द्वीपों जैसे आयरलैंड और न्यूजीलैंड को छोड़कर दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी के सबसे पुराने और रहस्यमयी जीवों में से एक है। इनका शरीर लंबा, बेलनाकार और सलकों से ढका होता है। ये अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर पाते, इसलिए धूप सेक कर या ठंडी जगहों पर छिप कर तापमान बनाए रखते हैं। सांप मांसाहारी होते हैं। ये शिकार को चबाने के बजाय पूरा निगल जाते हैं। इनके जबड़े की बनावट बहुत लचीली होती है, जिससे वे अपने सिर से कई गुना बड़े शिकार को भी आसानी से निगल सकते हैं। सांपों के शरीर में लैक्टोज यानी दुग्ध शर्करा को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं। दूध पीने से सांप की आंतों में गंभीर संक्रमण हो सकता है, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। सपेरे सांपों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण तड़प रहा सांप सामने दूध आने पर उसे पानी समझकर पी लेता है। सांप समय समय पर अपनी पुरानी त्वचा बदलते हैं, जिसे केचुल उतारना कहते हैं। सांपों के पैर नहीं होते, लेकिन वे पूरी तरह बिना हड्डियों के नहीं होते। इनके शरीर में लचीली रीढ़ की हड्डी और सैकड़ों पसलियां होती हैं, जो इन्हें रेंगने में मदद करती हैं। सांपों की आंखों पर पलकें नहीं होती और न ही इनके बाहरी कान होते हैं। सुरक्षा के लिए उनकी आंखों पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे ब्रिल कहा जाता है। इस कारण से खुली आंखों से सोते हैं। ये जमीन के कंपन से ध्वनि को महसूस करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाचते, बल्कि यह सतर्कता और आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब सपेरा सांप के सामने बीन को हिलाते हुए बजाता है, तो सांप बीन को अपने लिए खतरा या दुश्मन मानता है। जैसे जैसे सपेरा अपनी बीन को दाएं बाएं घुमाता है, सांप भी उस पर हमला करने या खुद को बचाने के लिए अपने फन को उसी दिशा में घुमाता है। इसे ही लोग भूलवश नाचना समझ लेते हैं। सांप अपनी नाक के बजाय जीभ से सूंघते हैं। जब वे जीभ बाहर निकालते हैं, तो हवा के रासायनिक कण मुंह के ऊपरी हिस्से में स्थित जैकब्सन अंग तक पहुंचते हैं, जिससे उन्हें शिकार का पता चलता है। वाइपर और अजगर जैसे कुछ सांपों के चेहरे पर हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं। ये उन्हें रात के अंधेरे में भी जीवों की शारीरिक गर्मी को महसूस करने की क्षमता देते हैं। सर्प की लगभग 70% प्रजातियां अंडे देती है, जबकि अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या समुद्र में रहने वाली कुछ प्रजातियां सीधे बच्चों को जन्म देती हैं। सांपों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। फिल्मों या कहानियों में दिखाया जाने वाला सांप का बदला लेना या आंखों में फोटो खींचना एक मिथक है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सांप की मणि या नागमणि पूरी तरह से एक काल्पनिक और पौराणिक मान्यता है, जिसका विज्ञान में कोई अस्तित्व नहीं है। कहानियों में माना जाता है कि जब कोई किंग कोबरा 100 वर्षों से अधिक जीवित रहता है, तो उसकी जहर ग्रंथि का विष धीरे धीरे सूख कर ठोस क्रिस्टल या चमकती हुई मणि का रूप ले लेता है। सांपों के सिर में मोती या रत्न बनाने वाले जैविक ऊतक या जैविक प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। कुछ सपेरे या ठग लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सांप के सिर पर छोटा सा चीरा लगाकर पहले से ही कोई चमकदार पत्थर या रेडियम का टुकड़ा गोंद से चिपका देते हैं। फिर जनता के सामने उसे नागमणि निकालने का नाटक करके भारी पैसों में बेचते हैं। नागमणि के नाम पर चमकीले पत्थरों को करोड़ों रुपए में बेचने का दावा केवल वन्य जीव तस्करी और अंधविश्वास से जुड़ी धोखाधड़ी का एक हिस्सा है। कुछ दुर्लभ मामलों में सांपों के पेट या आंतरिक अंगों में खनिज जमा होने से कंकड़ जैसी संरचना बन जाती है, जिसे इंसानों की तरह ही पत्थरी कहा जाता है। प्राचीन काल में लोग अनजाने में इसे ही सांप का पत्थर मान लेते थे, लेकिन इसमें कोई जादुई चमक या अलौकिक शक्ति नहीं होती। इच्छाधारी सांप पूरी तरह से भारतीय लोक कथाओं, मिथकों और फिल्मों की एक काल्पनिक उपज है, जिसका विज्ञान में दूर दूर तक कोई आधार नहीं है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई सांप 100 वर्ष

या उससे अधिक जीने के बाद इच्छाधारी बन जाता है, जो कोई भी रूप धारण कर सकता है। जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश सांपों की अधिकतम आयु प्रजाति के आधार पर केवल 10 से 25 वर्ष ही होती है। कोई भी रूप धारण करना जीव विज्ञान की दृष्टि से असंभव है, क्योंकि यह शरीर गठन के नियमों से परे है। सांप समय समय पर अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ते हैं, जिसके बाद उनकी नई त्वचा बेहद चमकदार और ताजी दिखाई देती है। प्राचीन काल में लोगों ने इसे पुनर्जन्म या रूप बदलने की शक्ति के रूप में गलत समझ लिया। पौराणिक कथाओं में नागलोक और दिव्य नागों जैसे वासुकी या शेषनाग का उल्लेख मिलता है, जो स्वेच्छा से रूप बदल सकते थे। इन आध्यात्मिक प्रतीकों को समय के साथ आम सांपों से जोड़ दिया गया। इच्छाधारी सांप या नागमणि जैसी काल्पनिक कहानियों के कारण अक्सर लोग सांपों को रहस्यमय समझकर डरे रहते हैं। दुनिया भर में सांपों की लगभग 4000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अकेले भारत में लगभग 300 प्रजातियां मौजूद हैं। किंग कोबरा खतरनाक विषैला सांप है, जो मुख्य रूप से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है, जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है। इसके फन के पीछे चश्मे जैसा निशान होता है। करैत सांप रात में सक्रिय होता है। इसका जहर बहुत ही घातक होता है और इसके काटने पर दर्द महसूस नहीं होता, जिससे सोते हुए इंसान की मौत हो जाती है। रसल वाइपर भारत में सबसे अधिक इंसानों को काटने वाला सांप है। इसके काटने पर तेज दर्द, सूजन और अंदरूनी रक्तस्राव होता है। साई स्केल्ड वाइपर खतरा महसूस होने पर अपने सलकों को आपस में रगड़कर आरी जैसी आवाज निकालता है। दुनिया के अधिकांश सांप विषहीन होते हैं। इनमें से अधिकांश इंसानों के लिए हानि रहित होते हैं। धामन चूहों को खाकर किसानों की मदद करता है। पानी और दलदली इलाकों में पाया जाने वाला वाटर स्नेक बिना जहर का सांप है, जो मुख्य रूप से मछलियां और मेढक खाता है। अजगर विषैले नहीं होते हैं। ये शारीरिक ताकत से शिकार को दबाकर मारते हैं और निगल जाते हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन लंबाई के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। वजन के मामले में दुनिया का सबसे भारी सांप अनाकोंडा है। सी स्नेक पूरी तरह से समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनका जहर बहुत खतरनाक होता है, लेकिन ये इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे वजनी सांप है। इसका वजन 250 किलोग्राम या उससे अधिक हो सकता है। ये आमतौर पर 20 से 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनकी आंखें और नथुने सिर के ठीक ऊपर होते हैं। इसकी मदद से ये पानी के भीतर पूरी तरह छिपकर भी बाहर देख और सांस ले सकते हैं। एक बार बड़ा शिकार निगलने के बाद अनाकोंडा को उसे पचाने में हफ्तों लग जाते हैं। इसके बाद वे कई महीनों तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं। विश्व की विभिन्न सांस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में सर्प एक अत्यंत जटिल, शक्तिशाली, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का प्रतीक रहा है। जहां कुछ संस्कृतियों में इसे ज्ञान, अमरता और चिकित्सा का प्रतीक माना गया है, वहीं कुछ में इसे विनाश, धोखे और अराजकता से जोड़ा गया है। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए सर्प दैवी संरक्षण और अराजकता दोनों का प्रतीक था। यूनानी चिकित्सा के देवता एस्केलेपियस की छड़ी पर एक सर्प लिपटा होता था। आज भी यही प्रतीक दुनिया भर में चिकित्सा के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। ओरोबोरोस अपनी ही पूछ को खाते हुए एक सर्प का चित्र है, जो समय के साथ स्वचक्र, अमरता और ब्रह्मांड की निरंतरता को दर्शाता है। यहूदी और ईसाई संस्कृति में सर्प को मुख्य रूप से एक नकारात्मक और विद्रोही रूप में देखा गया है। एक चालाक सर्प ने ही हव्वा को वर्जित फल खाने के लिए उकसाया था। सांप चीनी ज्योतिष के 12 राशियों से जुड़े जीवों में से एक है। प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं के अनुसार नुआ और फूशी नाम के दो अर्धमानव और अर्ध सर्प जीवों ने ही मानव जाति का निर्माण किया था। अमेरिका की एक्जिस्टिक सभ्यता में केत्ज़ालूत नाम के एक पंख वाले सर्प देवता की पूजा होती थी, जिन्हें हवा, बारिश, कला और ज्ञान का देवता माना जाता था। स्कैंडिनेवियाई कथाओं में सर्प विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति और धर्म में सर्पों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय है। इन्हें विनाश और भय के प्रतीक के बजाय पुनर्जन्म, ज्ञान, समय के चक्र और रक्षक के रूप में देखा जाता है। भगवान शिव के गले में हमेशा नाग विराजमान रहते हैं। दूसरी ओर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हैं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाकर लोगों नागों की पूजा की जाती है।
देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में वासुकी नाग ने

0: रस्सी का कार्य किया था। ज्योतिष के संदर्भ में काल सर्पयोग से सभी परिचित हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में सर्पों को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान में गोगा जी और बंगाल में मनसा देवी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कई भारतीय जनजातियों में नागों को उनके कुल देवता या पूर्वज के रूप में पूजा जाता है, जो मानव और प्रकृति के गहरे रिश्ते को दर्शाता है। सर्पों का मानव जीवन, कृषि और चिकित्सा जगत में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। सांप, चूहे और अन्य कृंतक जीवों का शिकार करके फसलों की रक्षा करते हैं, इसलिए सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। सांप के काटने के इलाज के लिए जीवन रक्षक सीरम केवल सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है। हैपकिन संस्थान जैसी प्रयोगशालाएं इसके लिए भारी मात्रा में जहर खरीदती हैं। सांप के जहर में मौजूद एंजाइमों और प्रोटीनों का उपयोग उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे, अल्जाइमर और कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए दवाएं बनाने में किया जाता है। सांपों, विशेषकर अजगर और कोबरा की खाल का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले फैशन उत्पाद जैसे बेल्ट, लेडीज पर्स, बैग और जूते बनाने में किया जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अलावा वैज्ञानिक रूप से भी केचुली और सांप के अंगों का उपयोग कुछ पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। चीन, वियतनाम और थाईलैंड जैसे पूर्वी एशियाई देशों में सांप का मांस एक लोकप्रिय व्यंजन है। सर्प उद्यान जैसी जगहों पर पर्यटकों के माध्यम से रोजगार और राजस्व उत्पन्न होता है। सर्प खाद्य श्रृंखला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांप मध्य स्तर के शिकारी हैं। वे छोटे जीवों को खाकर उनकी आबादी को सीमित रखते हैं। सांप खुद बड़े जीवों जैसे बाज, चील, मोर, नेवले और जंगली सूरों का मुख्य भोजन है। उनके बिना उच्च स्तरीय शिकारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। सांप पर्यावरण में चूहों, छछुंदरों, मेढकों और टिड्डों की आबादी को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रखते हैं। सर्पों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन और मानव जाति की सुरक्षा के लिए अत्यंत अनिवार्य है। शहरीकरण, वनों की कटाई और कृषि भूमि के विस्तार के कारण सांपों के रहने के प्राकृतिक स्थान खत्म हो रहे हैं। जागरूकता की कमी के कारण लोग सांप को देखते ही डर या अंधविश्वासवश मार देते हैं। सांपों की कीमती खाल, जहर और मांस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनका अवैध शिकार किया जाता है। जंगलों के बीच से गुजरने वाले हाईवे पर वाहनों के नीचे कुचलकर हर साल हजारों सांप मर जाते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा भारत में सांपों को कानून के तहत सुरक्षा दी गई है। सांपों को मारना, उन्हें पकड़ना, पालतू बनाना या उनकी खाल का व्यापार करना एक दंडनीय अपराध है। सांपों का खेल दिखाने वाले सपेरों या मदारियों पर पूरी तरह प्रतिबंध है, क्योंकि वे सांपों के जहरीली दांत तोड़कर उन पर अत्याचार करते थे। अब सांपों को बिना नुकसान पहुंचाए उनका जहर निकालने और उन्हें वापस प्रकृति में छोड़ने की वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को यह समझाने की आवश्यकता है कि सभी सांप विषैले नहीं होते और वे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। यदि घर या खेत में सांप दिखे तो उसे मारने के बजाय तुरंत वन विभाग या किसी स्थानीय स्नेक रेस्क्यूअर को सूचित करें। जंगलों और घास के मैदानों को नुकसान न पहुंचाएं ताकि वन्य जीवों को मानव बस्तियों में न आना पड़े। इस बातों का ध्यान रखकर ही हम पारिस्थितिकी तंत्र के इस महत्वपूर्ण जीव की रक्षा कर सकते हैं और जीव रक्षा के मूल भारतीय सिद्धांत को धरातल पर उतार सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता सर्पों की अनोखी दुनिया, एक विहंगम दृष्टि। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री प्रशांत कुमार, सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान साकेत महाविद्यालय अयोध्या।
2: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532921909।
3: आपके संदेश
4: संदेश से आते हैं,
3: आपके गीत
4: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे।

0: फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
2: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
1: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
2: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
1: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
3: और अब कार्यक्रम में एक गीत और सुनिए, फिल्म का नाम है 20 साल बाद। मिली जुली आवाजें हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज की कुछ प्रमुख स्थानीय समाचार। रामनगरी में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। श्री राम जन्म भूमि परिसर में रोजाना करीब 1,00,000 श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। जून माह में श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी ने एक बार फिर अयोध्या को देश के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र में शामिल कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरुवार को बारिश हुई, आज भी हल्की बारिश की संभावना है। अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आयोजित 4 दिवसीय ट्रायल के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को गोंडा की टीम विजयी रही।
1: कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।
4: प्रणाम अयोध्या।

101.9 एफएम बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एयर ऐप पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब सुनते हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

तो श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और बाबला मेहता की मिली जुली आवाजों में। फिल्म का नाम है चांदनी और इस गीत को पसंद किया है कवर कॉलोनी बड़वाह खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने।

अगली फरमाइश को हम शामिल कर रहे हैं जो कि है अनाड़ी फिल्म के इस गीत के लिए, और इस गीत को पसंद किया है रावण करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया ने। तो सुनिए अपनी पसंद का गीत अनाड़ी फिल्म से।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो
2: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9

0: 9:30 से शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आपके संदेश आपके गीत का अगला गीत है, एक लड़का एक लड़की फिल्म से साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में, और गीत को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा ने।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

उदित नारायण की आवाज में राजा हिंदुस्तानी फिल्म के इस गीत को पसंद किया है दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि पारस मणि पुष्पेंद्र मणि और नोखे लाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: अयोध्यावासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: हेलो अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को सविता का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और देखते हैं हमारे कौन से श्रोता आ चुके हैं लाइन पर। हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, हेलो
4: हेलो,
3: हाँ नमस्कार
4: जी, हमारा नाम श्लोक यादव, फरीदाबाद।
3: अच्छा श्लोक यादव जी, क्या करते हैं आप?
4: पढ़ाई करते हैं।
3: पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में है? टेंथ में। तो ये बताइए, आपकी कॉल पहली बार यहाँ लगी है, इससे पहले भी लग चुकी है?
4: हमारी बहुत बार लगी है।
3: अच्छा, बहुत बार लगी है। तो इस बार तो आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही है? हाँ, अभी से लग जाइए। और आगे बताइए कि आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
4: बोलो काटे का कोई भी।
3: अच्छा ठीक है, ठीक है, तो सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर।
4: नमस्ते।

0: और दोस्तों चलिए बातें करते हैं हमारे अगले श्रोता से जो कि आ चुके हैं लाइन पर। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: मैम मेरा नाम सिंधराज यादव है, मैं मुमताज नगर से बोल रहा हूँ।
0: जी क्या करते हैं आप?
1: जी मैम मैं पढ़ाई करता हूँ क्लास 10 में।
0: अच्छा अच्छा,
1: आपकी बात 10 की लाते
0: हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है, मन लगा के पढ़िए, बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके भी, है ना? और किस फिल्म को आज आपने पसंद किया है? ठीक है ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर। कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: मैं ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी फटाफट कर दीजिए।
1: हेमंत यादव और छोटू यादव।
0: जी जी ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
1: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
0: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
1: और साथ में अपना नाम, पता
0: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
2: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
3: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
4: हेलो अयोध्या, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और अब देखते हैं कौन से श्रोता आ चुके हैं लाइन पर। हेलो
5: हेलो, नमस्कार।
4: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
5: मैं राकेश बोल रहा हूँ शिमला से।
4: शिमला से, तो आप तो हमारे रेगुलर श्रोता है ना?
5: जी जी, मैं आपके सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, और खास कर मुझे आपका एक फोन प्रोग्राम सुनता था, युवा समाज जो गुरुवार को 5 बजे होता है।
4: अच्छा अच्छा,
5: तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ टॉपिक वाला। आप जो है अलग अलग अलग तरह के टॉपिक लाते तो उसमें
4: जी जी
5: नखा मुखा मिल जाता है।
4: जी जी, बहुत अच्छी बात है। और आज आप कौन से फिल्म को पसंद किए हैं?
5: आज मुझे रामचरित गंगा मैल का गाना सुनना है।
4: अच्छा, कौन सा गीत?
5: उसमें गाना है हुस्न पहाड़ों का, क्योंकि आज कल हमारे इधर मौसम सुहाना हो गया, और कल बारिश आई थी, अभी
4: जी
5: थोड़ी बूंदाबांदी गिर रही है।
4: जी, इधर भी मौसम का हाल थोड़ा ठीक हो गया है, गर्मी से कुछ निजात मिली हुई है अभी फिलहाल, है ना?
5: बिल्कुल।
4: तो ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया, और सुनिए अपनी पसंद का गीत।
5: जी, धन्यवाद।

0: और चलिए गायनों की दुनिया से निकल के आते हैं, अपने श्रोता से बात करते हैं, देखते हैं कौन आ चुके हैं लाइन पर। हेलो।
1: हाँ मैम, कभी आइए, अयोध्या आइए।
0: हम भी अयोध्या के ही हैं।
1: अच्छा मैम, तब तो हमें बड़ी खुशी हो रही है।
0: आपकी कॉल आकाशवाणी अयोध्या ही लगी है ना, अपना नाम बताइए।
1: हाँ अयोध्या ही लगी मैम। मैं बहुत पुराने, मतलब जब से जानती हैं मैं इतना, मतलब रेडियो सुनती हूँ। जब ये आता था, कहता था ब्रॉडकास्टिंग सिलोन, ब्रॉडकास्टिंग इंडिया।
0: अच्छा अच्छा,
1: विभाग।
0: हाँ हाँ,
1: ऐसे ही कुछ कहता था जी, से मैं सुनती हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताइए किस फिल्म का गीत आप सुने। अरे अपना नाम तो बता दीजिए, हम लोग बातों में उलझ गए। हेलो,
1: मंजरी मिश्रा।
0: ठीक है, कहाँ से आपने कॉल किया हमको?
1: अयोध्या।
0: अयोध्या से ही। तो आज आप कौन सा फिल्म पसंद की है
1: मैम? सरगम का सुना दीजिए या फिर सिलसिला का सुना दीजिए। ठीक सुना दीजिए।
0: ठीक है, सरगम फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवा दूँ?
1: चाहे डफली वाले सुना दीजिए, चाहे पर्वत के उस पार सुना दीजिए।
0: ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर।
1: थैंक यू।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: श्रोताओं, चलिए बातें करते हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या के अगले श्रोता से। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, अपना नाम बताइए।
3: मैं सलोनी शुक्ला बोल रही हूँ अयोध्या से, दर्शन नगर सूरकुंड के पास।
2: अच्छा, क्या करती हैं आप?
3: मैं डीटीसीएम का कोर्स करती हूँ, स्टडी।
2: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ आपकी हॉबी?
3: मैं डीटीसीएम का कोर्स कर रही हूँ, पार्लर ओपन करने का है।
2: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत आज आप सुनेंगी?
3: मैम क्या कहना लगा दीजिए, क्या कहना है, दिल लाया है बाहर।
2: अच्छा ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत।

आकाशवाणी अयोध्या से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए अब चलते हैं आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में।
1: जी।
0: अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे, गेंदा जैसे बैट बल्ला है वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी
1: बिल्कुल
0: घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम, आज के समय में क्या हो गया है लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं आज। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग। यहाँ भी, यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना?
1: जी, इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म में साथी उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिवीजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले की बात हुई है विविध भारती में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है मारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: अच्छा
0: तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: अरे तो टारगेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने से ज्यादा ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर टप्पा नहीं होते थे हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, मेरे जिम्मेदारी हमारी गुजर गई, जिम्मेदारी घर पे आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। वादा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो भी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी।
0: पसीना आता है।
1: जी।
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं उसको, मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, देखिए बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगी लाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है? तो
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी भेजे हैं।
0: ठीक है,
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको
1: आज? मुझे खुदा गवाह फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, आपको याद करूँ पिछड़ा याद मिला दे। और अब्बा
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, कबड्डी ये चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाइट ऊंची थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे। हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी से बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर ढाई महीने छोड़ दिया, यानी दो महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में दसवीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था।
0: हाँ, हाँ।
1: पहली से दसवीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं दसवीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था दसवीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेन में तो दसवीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गए आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गए आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो सप...

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात मेरे को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी मैं छोटेपन में, अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने नहीं देती थी दीदी,
0: क्यों?
1: लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए, आपने पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बार्शी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हो मैडम?
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है, आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो, आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: अभी इनसे आगे बहुत पत्र लिखता हूँ।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: वो प्रिया प्रिया क्यों बोला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं महम धेमाजी असम से विमल बसंतर बोलो। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, हम ठीक है। मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम, हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम, हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ,
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता नहीं।
0: अच्छा, समय रहते घर पहुँच जाते हो?
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम, हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा इसे करते रहता हूँ, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान, और दूसरा है।
0: हाँ, और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम, विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम, आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम, हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी,
1: बिल्कुल देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में, तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है, हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि

0: जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए। और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है, कैसा खेल है इसके बारे में बताइए तो क्या कहेंगे?
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं। खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए?
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन जी मैम, आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं, लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, सिमट करके रह गए हैं बच्चे। लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय। कौन सी चाय? खुशबूदार पत्तियां?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या

0: करते हैं, इसके अलावा खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है, और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है। तो बताइए, चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी। फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो शानदार नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चल रहा है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपकी?
1: मैं खेती की सारी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे एक गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867028। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। साहिल के बोल, रोशन का संगीत।

ताजमहल फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, तर्ज रोशन की थी। आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली के स्वर में एक गीत। ये रचना है महादेवी वर्मा की लिखी हुई, जयदेव ने संगीत तैयार किया। फिल्म का नाम त्रिकोण का चौथा कोण।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी। कलाम था कैसर उल जाफरी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी की बोल है, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सजदा एल्बम से ये गजल। ये है मीनू पुरुषोत्तम की आवाज, कलाम सरदार अंजुम का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूँ, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूँ। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ, मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर है आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
2: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेकर बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
2: सबके साथ है, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है

0: जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है, ते हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो, कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम है कि समय कम पड़ता है, तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? एलओपी तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगा।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है,
1: नहीं वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं, नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। सीबीआई को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता, बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।

0: लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है,
1: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए

0: नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इम्पोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए, कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कारपूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो

0: को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम तीन मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी एआई नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं।
0: देखिए हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए एआई का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं, एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं। जैसे एआई के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो के भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए, ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है, हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की, एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा, एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूं, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूं, और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो काम करो काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख थी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ।

0: विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थीं रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
1: मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
2: धन्यवाद।
1: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज्यादा बेहतर हैं, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं, और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही

0: खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहां पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी, उसके ऊपर वहां पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
0: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें, अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनर्जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव, जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं, वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप, अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का, ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा, बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे, और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं,

0: मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए, पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा, पर मैं ये भी मानता हूं कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेन ज़ेड दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली, जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और अब आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के

0: विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com AYODHYAAKASHVANI@gmail.com

अवधि लोक गीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं श्रद्धा शुक्ला की आवाज में ये भजन।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: Cash Money. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो दोस्तों, लोकरंग के इस कार्यक्रम में आइए अब अगली आवाज सुनते हैं अल्पना मेहरोत्रा की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग, और चलते चलते कार्यक्रम में शामिल करते हैं गणेश सिंह की आवाज में ये निर्गुण।

0: तो श्रोताओ, इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का ये लोकरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और अब आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
4: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है।

0: है घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
3: तो दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुनने जा रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और ये फरमाइशें वो होती हैं जो आप हमें भेजते हैं फेसबुक पेज के माध्यम से। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं उन फरमाइशों को पढ़ने का। और सबसे पहला जो संदेश हमें मिला है वो है विजय सुरालकर का। आप हमें लिख रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से। आप हम सुनना चाहते हैं फिल्म कुर्बानी का गीत, और इसी गीत के लिए जो और फरमाइशें आई हैं वो हैं रमेश कुमार के पटेल नगर मलोट से, शिव चौहान बाबा कुटी रायगढ़ से, जाकिर मंसूरी बाजार रोड मुंगीसापुर से, रविंद्र सिंह छावड़ा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, राधा नामदेव सहारनपुर से, संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, अनिल बी घोड़के और हमें ये संदेश भेजा है आपने अंबहिता सिल्लोट से, नरेश मल्होत्रा निट्टू और ये संदेश हमें मिला है खैल बाजार पानीपत से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नरेश मल्होत्रा निट्टू, ओम प्रकाश राय बाबापट्टी बलिया से, अरविंद कुमार बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, अरुण कुमार मालवीय और आपने हमें ये खत मिला है भेजा है बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से, अनिल बी घोटके इस गीत की फरमाइश है औरंगाबाद महाराष्ट्र से, पुंजली नवाकर संदेश आप ये भेज रहे हैं हमें नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, नरेश और राजेश कुमार वर्मा राज पैलेस महुनाथ भंजन से, और आफताब अंसारी मोहल्ला मंसूर गंज द्वारा उत्तर प्रदेश से। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं फिल्म कुर्बानी का ये गीत जिसे आवाज दी है नाजिया हसन ने।

दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं फेसबुक पेज पर आई फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। और अगली जो फरमाइशें हैं उसमें जो पहली फरमाइश है वो है फिल्म दो रास्ते के गीत के लिए। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं गजानन येले सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मोहम्मद यासीन अंजन गिरिडीह झारखंड से, रवि कुमार राहुल कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, सतीश अनेजा। और आप हमें ये संदेश भेज रहे हैं चंडीगढ़ से। सुरेश गगनेजा ये संदेश मिला है हमें जलालाबाद वेस्ट से। इंजीनियर फैजल इमाम आप लिख रहे हैं हमें हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। निसार सलमानी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी आप फरमाइश कर रहे हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। राधे श्याम शर्मा गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से। रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से। उमा सिंह पौड़ी गढ़वाल से। और बी आई ढाकर उज्जैन मध्य प्रदेश से। राहुल मनवार आपका ये संदेश हमें मिला है शाहूनगर यवतमाल से। विनोद वंदालकर रायपुर छत्तीसगढ़ से। प्रवीण श्रीमाली इसी गीत को सुनना चाहते हैं कवर कॉलोनी बड़वा एमपी से। नारायण लाल साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। प्रमोद कुमार साहू बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से। तो आप सभी की पसंद पर आई ये कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं फिल्म दो रास्ते का गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। और अगली जो फरमाइश है वो है फिल्म सड़क के गीत के लिए। और इस कार्यक्रम में फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं नीलू मेघ राजधानी रायपुर से, जगमोहन सिंह प्रजापत बागपत से, फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से, सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराव से, दिलावर खान रघुवीर नगर से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, वेद प्रकाश मिधा इस गीत को सुनना चाहते हैं, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, कमल साहनी रामगढ़ कैंट झारखंड से, धीरज गुप्ता उगाती बदायूं से, आफ्ताब उजारे और आपने अपना पता नहीं लिखा कोई बात नहीं, मोहम्मद सईद अब्बासी इस गीत को सुनना चाहते हैं, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से, शुभ चंद्र बजाज कालका से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ कैंट से, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, सोमदत्त नाभा जिला पटियाला पंजाब से, बाल कृष्ण नंगलखेड़ा फगवाड़ा से, रामकुमार रिवार सादुल शहर राजस्थान से, जगर राम साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, नरेन नेतम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से, सुभाष गोदारा गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से, बोधराज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से, मोहम्मद इंतजार भोजपुर तगा सहारनपुर से और ओम बागरिया गांव बांडीवाला फाजिलका से। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं फिल्म सड़क का गीत, जिसे आवाज दी है अनुराधा पौडवाल ने।

और दोस्तों कुछ तुमने कहा कि इस कार्यक्रम में जो अगला गीत हम आपके लिए शामिल कर रहे हैं वो है फिल्म तीसरी कसम का। और इस गीत के लिए जो नाम हमने चुने हैं वो हैं इस तरह से, उत्तम कुमार भगत पाकुड़ झारखंड से, फहीम मंसूरी बांदा यूपी से, विनोद लखनपाल रनवार करनाल से, अनिल मोहन पहाड़गंज मुल्तानी ढांडर से, अशोक बब्बर रामसिंहपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से, हुकुम कर्माकर बिरड़ी मध्य प्रदेश से, राजेश वर्मा लालकुर्ती रुड़की कैंट से, ब्रिजेंद्र भगत हजारीबाग झारखंड से, मुकेश शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से, आरसी कांबड़े जवाहरनगर दुर्ग से, संतोष भाकरे नांदेड़ महाराष्ट्र से, किसान सपकाल और ये संदेश मिला है शास्त्री नगर बीड शहर से, उत्तम सिंह जंगेल हमें ये संदेश भेज रहे हैं कोहका भिलाई से, महेंद्र मोदी का संदेश है रामगढ़ कैंट से, अंजन कुमार सिंह इस कार्यक्रम में अपने संदेश को भेज रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से, शकन पाल शंकर लाल जयसवाल नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से, प्रवीण

शुक्ला गोंडा से और आप लिख रहे हैं मिट्टी से भी यारी रख दिल से दिलदारी रख चोट ना पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख पल भर में ये जोश जवानी का बुढ़ापे की भी तैयारी रख दिन सबसे मिलता नहीं दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबां प्यारी रख। बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपकी। और अगला संदेश है सिद्धार्थ गुंडाने का जो हमें मिला है राहुल नगर अमरावती से और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। गोविंद वैष्णव तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। तो आइए आप सभी की फरमाइशों पर कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं फिल्म तीसरी कसम का गीत जिसे आवाज दी है मन्ना डे ने।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, जो आधारित है हमारी फेसबुक पेज पर आई फरमाइशों पर। और जिन फरमाइशों को लेकर अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं वो है फिल्म पत्थर की सनम का गीत। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं सतवीर सिंह बिजमानिया सिरसा हरियाणा से, बबलेश पनवार गांधी चौक बाड़मेर से, संतोष नामदेव। और आपने हमें ये संदेश भेजा है बघेरा दुर्ग से, विकास बांसोले मित्रनगर बीडशहर महाराष्ट्र से, विनोद बरसा खोखरा वाली श्री गंगानगर से, राजेश खोबारखेड़े देशमुख महाराष्ट्र से, धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से, नंद किशोर घटे अंजलि करवा बाला बीडशहर महाराष्ट्र से, बनवारी जयपाल हमें आप संदेश भेज रहे हैं गंगानगर

श्रीगंगानगर से राहुल बांबिस्टे और हमें ये संदेश मिल रहा है कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से राघव बघेल इस गीत को सुनना चाहते हैं। लंघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से बेनी सिंह का हमें ये संदेश मिला है। मनकारा मंदिर उत्तर प्रदेश से राजेंद्र नारंग बटिंडा रोड मंडी डबवाली से जीवान विश्वकर्मा हमें ये संदेश मिला है। झारखंड से सर्वेश चौरसिया साहबगंज चौराहा यूपी से विनोद मुनत उज्जैन बारखेड़ा से प्रकाश निषाद बलू जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कांति शुक्ला गोंडा उत्तर प्रदेश से रमेश चौहान जोधपुर राजस्थान से आर कुमार वंडिंगखेड़ा पंजाब से के आर साहू देवरी भाटपारा से और बालकर्ण वर्मा ने इस गीत की फरमाइश की है। पठेरा बाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपके नामों के साथ और इस कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं फिल्म पत्थर के सनम से ये गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
1: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
2: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
2: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात,
4: और भाई साहब क्या हाल है?
5: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे, बगल में डस्टबिन है।
4: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
5: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
6: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से एक बार हम फिर लौट आए हैं आपके साथ कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, और शुरू करते हैं उन संदेशों को पढ़ने का सिलसिला जो आपने हमें भेजे हैं फेसबुक पेज के माध्यम से। और जो गीत आप सुनना चाहते हैं वो है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, और संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अशोक श्याम कुंवर टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से, ज्ञान भूषण शर्मा रावर करनाल से, राजकुमार दूदी जिला हिसार से, तुलसी मस्कीन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, मोहम्मद फरमान जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, तुलसीदास चुग मस्कीन पंचकुला चंडीगढ़ से, मुकेश गोस्वामी उच्च भट्टी बिलास

बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजबीय डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, देवेंद्र कुमार गुप्ता उगहती, शमशुल कुमार रशी शमशुल कुमार राही गंज डुंडवारा से, मोहम्मद कलीम अंसारी गंज डुंडवारा से, माधव नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, उदयभान पाल महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, बिल्लू चिदालिया लोहारू हरियाणा से, श्रवण कुमार प्रजापत जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, महेंद्र मरकम आपने हमें ये खत भेजा है जमशेदपुर से, चिन्मोय महताब जोहार जमशेदपुर से और राजपाल हमें ये खत मिला है नागर मलोट पंजाब से। तो आप सभी की फरमाइशों पर आप सभी के नामों के साथ आइए कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गीत जिसे आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

आकाश वाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, जिसमें हम आपके लिए पेश कर रहे हैं फेसबुक पेज पर आई फरमाइशों को। और ये जो अगली फरमाइश है वो है फिल्म आंधी के गीत के लिए, और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं अनिल वर्मा जो हमें खत भेज रहे हैं सदर बाजार कुरावली से, मोहम्मद रफीक पंवार ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से, सुरेश जायसवाल जमानिया गाजीपुर से, अंकुश अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, सोहन जोशी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, एम अफजाल ताज कोलसिटी बरकाकाना से, दीपेश वर्मा पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, गुरमीत सिंह मीटा नई दिल्ली से, अजीत कसाना मुरादाबाद से, मोहम्मद यासीन गंज डुंडवारा से, इरशाद अहमद मड़ियाऊ जौनपुर से, सदानंद मंदूरकर डाबकी रोड अकोला से, सुरेश राठौर गांधीनगर गुजरात से, मुकेश गौतम चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से, किल्लू परवेज हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और हमारे श्रोता लिखते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, बहुत ही सुंदर संदेश है आपका। पुखराज बद गुजर ज्योति नगर नोखा राजस्थान से, विनायक बेंडे आकोट से, पीरजादा पीरजादा आपका ये संदेश हमें मिला है कश्मीर सालार पहलगाम कश्मीर से, बीके हितेंद्र आसाम से, कुंवर कृपाल सिंह परिहार रतलाम मध्य प्रदेश से। तो आप सभी श्रोताओं के नामों के साथ कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं फिल्म आंधी से ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है फिल्म भाई भाई से। और हमारे जो श्रोताओं के नाम अब शामिल होने वाले हैं वो हैं गंगा सिंह रावत हल्द्वानी उत्तराखंड से, दातार सिंह सीकर राजस्थान से, रणधीर गुप्ता ओखला संगम बिहार दिल्ली से, हरजिंदर छिंदा नथाना पंजाब से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, अशोक सिंह मध्य प्रदेश से, रिजवान खान छत्तीसगढ़ से, राजू मिंगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, रश्मि पांड्या राजकोट गुजरात से, नंदन कुमार सिंह

बेगूसराय बिहार से, सतेंद्र चिंसौलिया पंजौनिया जालौन से, जगदीश धाकड़ हिंगड़ी आलोट से, रूपेश संघाई परभणी महाराष्ट्र से, पीबी कुलथे बीट शहर महाराष्ट्र से, अनवेर अंसारी अहमदाबाद मंडी पंजाब से, बी कमल मयूकर टेला से, ताज अंसारी गुलाम साबिर आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, हल्के जयपाल यादव बुंदेलखंड यूपी से, अशोक वर्मा खरगोन सरावद मध्य प्रदेश से, धीरज भाई राबरी आप हमें ये संदेश भेज रहे हैं गुजरात पाटन से, वलीउल्लाह अंसारी पुराना तालाब डुमराव से, बाबू भाई उदयपुर राजस्थान से, विनय मोहन हमें ये संदेश मिला है जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से, बिट्टू भाटिया झज्जर हरियाणा से, हीरामणि वर्मा भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, जॉन डिकेस्ट्रो ये खत है जनकपुरी सहारनपुर से, सीताराम कागड़ा रोहतक से, सुदर्शन शाह नेपानगर मध्य प्रदेश से। तो आइए और कुछ और भी नाम है, सुखविंदर सिंह जौड़ा आप हमें ये संदेश भेज रहे हैं, कृष्णा पार्क दिल्ली से, गोल्डन एरा सॉन्ग इंदौर से, रामचंद्र मखीजा आप इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से, सैयद यूनुस हमारे साथ हैं जालना मराठवाड़ा से, अनोखे लाल हम ये संदेश भेज रहे हैं पुराना शहर बरेली से, नंद कुमार ठाकुर इस गीत को सुनना चाहते हैं चरौदा पार नवापारा छत्तीसगढ़ से, चंद्रकांत साहू छत्तीसगढ़ से, आशीष बारी जगदीशपुर जिला बस्ती से, आर्यन राज मुजफ्फरपुर बिहार से, संतोष खट से और आपने ये संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, एस के अलीबख्श तेलंगाना निजामाबाद से, अनिल जैन जी के परमार गांधीनगर गुजरात से, भूपेंद्र जुनेजा और ये हमें संदेश मिला है पश्चिमपुरी दिल्ली से, श्रवण कुमार प्रजापति जलालपुर जिला सहारनपुर से, दुर्गाराम साहू कबीरधाम छत्तीसगढ़ से, मंगल प्रसाद निषाद ग्राम कुंदुरख खुर्द सुहावल अयोध्या से, मुजफ्फर हफीजुर रहमान पंजाब से, सुरेंद्र खुराना नई दिल्ली से, नितेश कुमार देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ से और आप हैं चंद्र पल पटवाजी और हमें ये संदेश आपने भेजा है धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं फिल्म भाई भाई से ये गीत।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ।
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और अब आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम गीतांजलि।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
4: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
5: घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
6: जग घूमे थर जैसा न कोई।
4: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
5: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
0: या हमें ईमेल करें अयोध्या आकाशवाणी @

0: gmail.com पर
1: AYODHYAKASHVANI@gmail.com
2: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
3: आकाशवाणी अयोध्या से गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कैलाश खेर की गाई इस गीत के साथ।

0: क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजी 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है।

0: वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दिल्ली से समाचारों के बाद आपके साथ है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और अब प्रस्तुत है आप सभी के लिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगना।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: नन्हे हाथन माँ किताब रहे, आखन माँ एक ख्वाब रहे, खेलें कूदें पढ़े लिखें, बस ऐसन हर बालक के हाल रहे। इन्हीं पंक्तियों के साथ हाजिर है आज आपके सखी मितु आपका मनपसंद मन भावन कार्यक्रम अंगनामा। सखी सहेली, बच्चे फूलन जैसन कोमल होते हैं और उनके मुस्कान में पूरा संसार पूरा घर बसत है। मुला जब यही नन्हे नन्हे हाथ के हाथ से जो है मजदूरी के बोझ उठावा जाता है ना, तो उनके बचपना उनके मुस्कान कहूँ खोई जाते हैं। और बहनी यही का कहा थे बाल श्रम। सखी सहेली, जाना थी कि आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है मनावा जाता है और ये दिवस हम सभी का जागरूक करत है कि हमरे लोग आपन आसपास परिवार माँ गांव माँ समाज माँ होए वाले बाल श्रम का रोकी। मुला उसे पहले बात करी थे कि बाल श्रम आखिर कितने उम्र तक के बच्चन का कहा जाता है, तो बताए थे कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं अगर उनसे मजदूरी करावा जाता है उनसे काम लिया जाता है तो उन्हें बाल मजदूर के श्रेणी में लावा जाता है। मुला मजदूरी के कारण भी देखो बहुत होते हैं, गरीबी और अशिक्षा उमन मुख्य है और बाल मजदूर भाई वही बनत हैं जो उनकी गरीब होते हैं और मजबूर होते हैं। तो सखी सहेली, कभो कभो गरीबी के चलत ना माँ बाप ही अपने बच्चन का काम करे दूसरी जगह भेज देते हैं और कभो कभो बच्चे के ऊपर माँ बाप के अगर साया ना आए होते तब वो बच्चा मजदूरी करे का मजबूर हो जाते हैं। देखो भाई, आज आपन सरकार भी बच्चन की पढ़ाई खातिर कई योजना चलाए है, स्कूल में किताब है, ड्रेस, भोजन और तमाम मेरे के सुविधा भी देते हैं। तब हम आपन बच्चन का स्कूल से दूर काहे रखी भाई। जानत सखी, माँ ही आपन बच्चन के पहली गुरु होती हैं, तो बस हमें ये संकल्प ले के जरूरत है कि हम आपन बच्चा का पढ़ाई और उनके सपना पूरा करब। और दूसर बात बहनी, हम सभी का जागरूक भी होएगा चाहिए कि जब भी कभो देखो कोनो बच्चन का काम करत हुए मजदूरी करत हुए तो जहाँ भी वो बच्चा मजदूरी करत है हुआ के जो मालिक है उनका ये समझावे कि बच्चा से काम ना ले बल्कि का पढ़े किताए भेजे और वो बच्चा का भी समझावे के पूरा प्रयास करें कि पढ़ाई बहुत जरूरी है और उनका पढ़ावे किताए जागरूक करें। कहें कि आज जब हम बच्चन का शिक्षा संस्कार और अवसर देवना तभी तो काल का वो देश के मजबूत आधार बनी है। मुला अगर बचपना मजदूरी में ही बीत गवाना तो बच्चा आगे ना बढ़ पाए और ना ही आपन गांव आपन समाज आगे बढ़ पाए। और यही पे काकी एक कहावत भी कहा।

0: है कि जैसन बीज बोईब वैसन ही फल काटिब। तो भाई अपन गांव देश के विकास की ताय हम सभी मिलके बच्चन के उज्जवल भविष्य के बात करब, तभे तो हर बच्चा पढ़े लिखे, हर आंगन मुस्काए, बाल श्रम मुक्त भारत के सपना साकार हो जाए। और बाल श्रम पे ही अनामिका मिश्रा बहनी अपन विचार देती वार्ता के माध्यम से। शिक्षा और प्रेम से संवारू बचपन, स्वयं समाज और राष्ट्र के लिए, चलो सुना जाए।
1: कहा जाता है कि आज का बच्चा कल का नागरिक है। उसके मन में जो संस्कार, जो मूल्य और जो सपने हम आज बोते हैं, वही कल समाज और राष्ट्र के रूप में फलते फूलते हैं। बचपन जीवन की वह कोमल अवस्था है जहां मन मिट्टी की तरह होता है। जिस रूप में उसे ढाला जाए वह वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता है। यदि इस मिट्टी को शिक्षा का आकार और प्रेम का जल मिले तो एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, यदि हमें वास्तविक शांति स्थापित करनी है तो इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी। केवल शिक्षा अक्षर का ज्ञान ही नहीं है, शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति के भीतर विवेक, संवेदनशीलता, नैतिकता और आत्मविश्वास का विकास। वहीं प्रेम का बल वह है जो बच्चों को सुरक्षा, अपनापन और आत्मबल प्रदान करता है। यदि शिक्षा हो लेकिन प्रेम न हो तो व्यक्तित्व कठोर बन सकता है, और यदि प्रेम हो लेकिन शिक्षा न हो तो क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। इसलिए शिक्षा और प्रेम दोनों का संतुलन ही बच्चे के सर्वांगीण विकास का आधार है। हमारे शास्त्रों में भी शिक्षा के महत्व को अत्यंत स्पष्ट रूप से बताया गया है। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाते वे उसके शत्रु के समान हैं। अशिक्षित व्यक्ति विद्वानों की सभा में वैसे ही शोभा नहीं पाता जैसे हंसों के बीच बगुला। यह श्लोक केवल विद्यालय शिक्षा की बात नहीं करता बल्कि जीवनोपयोगी शिक्षा और संस्कारों की ओर भी संकेत करता है। प्रिय श्रोतागण, आज के समय में हम बच्चों को अच्छी सुविधाएं तो दे रहे हैं लेकिन कभी कभी अपना समय और स्नेह देना भूल जाते हैं। बच्चे महंगे खिलौनों से अधिक माता पिता के साथ बिताए गए कुछ प्रेम पूर्ण क्षणों की अपेक्षा रखते हैं। एक छोटी सी कहानी इस संदर्भ में याद आती है। एक सफल व्यवसायी अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि अपने बेटे को समय ही नहीं दे पाता था। एक दिन बेटे ने पूछा, पापा आप एक घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने कहा, लगभग 500 रुपए। बेटे ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर कहा, पापा ये 500 रुपए रख लीजिए और आज एक घंटा मेरे साथ बैठ जाइए। उसके पिता की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसका बच्चा धन नहीं, उसका समय और प्रेम चाहता था। यह कहानी हमें बताती है कि बच्चों के विकास में प्रेम की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा और प्रेम से सवरा बचपन सबसे पहले स्वयं बच्चों के लिए लाभकारी होता है। ऐसा बच्चा आत्मविश्वासी, संवेदनशील, अनुशासित और जिम्मेदार बनता है। वह चुनौतियों का सामना करना सीखता है और अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर पाता है। दूसरा लाभ समाज को मिलता है। जब बच्चों में नैतिक शिक्षा, सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित होती है तो समाज में अपराध, हिंसा और भेदभाव कम होते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर अच्छे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, किसान, सैनिक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा लाभ राष्ट्र को होता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने देखो क्योंकि सपने विचारों में और विचार कर्म में बदल जाते हैं। लेकिन बड़े सपने वही बच्चा देख सकता है जिसे शिक्षा दिशा दे और प्रेम हौसला दे। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण केवल संसदों और नीतियों से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण घरों, विद्यालयों और आंगनों से होता है। जब एक बच्चा माँ से करुणा सीखता है और जब एक पिता ईमानदारी का पाठ उसे पढ़ाता है, जब एक शिक्षक ज्ञान के साथ संस्कार भी देता है, तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों को केवल परीक्षा में अंक लाने वाली शिक्षा न दें बल्कि जीवन जीने की शिक्षा दें। नई शिक्षा नीति भी यही कहती है कि आज हमें अपने बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाने की आवश्यकता है।

उन्हें यह सिखाएं कि सफलता के साथ साथ संवेदनशीलता भी जरूरी है, प्रतियोगिता के साथ ही सहयोग भी जरूरी है और अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को केवल सुविधा नहीं बल्कि समय भी देंगे, केवल ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार भी देंगे। लेकिन जब हम शिक्षा और प्रेम से सवरे हुए बचपन की बात करते हैं, तब हमें उन लाखों बच्चों को भी याद करना चाहिए जिनका बचपन आज भी मजदूरी के बोझ तले दबा हुआ है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। यह दिन हमें यह संकल्प करने का अवसर देता है कि कोई भी बच्चा अपने हाथों में औजार नहीं बल्कि किताब और कलम उठाए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई माता पिता बच्चों को खेतों, दुकानों और अन्य कार्यों में लगा देते हैं। यह सच है कि गरीबी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि बच्चे की कमाई परिवार की गरीबी को स्थायी रूप से दूर नहीं कर सकती, जबकि उसकी शिक्षा पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से विनम्र आग्रह है कि बच्चों को मजदूरी न कराएं, उन्हें विद्यालय भेजें। याद रखिए, बाल श्रम से घर का आज तो चल सकता है, लेकिन शिक्षा से पूरे परिवार का कल संवर सकता है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में पुस्तक होनी चाहिए, उस उम्र में यदि उनके हाथों में फावड़े और हथौड़े होंगे, तो यह केवल उस बच्चे का नहीं पूरे समाज का नुकसान है। आज आवश्यकता है कि परिवार, विद्यालय, समाज और प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक बचपन का अधिकार प्राप्त कर सके। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम भी यह संकल्प लें कि किसी भी बच्चे से मजदूरी नहीं कराएंगे और न ही इसे प्रोत्साहित करेंगे। यह भी समझना होगा कि बाल श्रम केवल गरीबी का परिणाम नहीं है, बल्कि कभी कभी जागरूकता की कमी और सामाजिक स्वीकार्यता भी इसका कारण बनती है। यदि हम किसी बच्चे को काम करते देखें तो केवल सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय उसके शिक्षा और संरक्षण के अधिकार के बारे में भी सोचें। मैं तो यही कहूंगी कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर बचपन मुस्कुराए, न मजदूरी का बोझ उठाए, शिक्षा से अपना भविष्य बनाए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है कि शिक्षा सभी के लिए समान रूप से होनी चाहिए। मेरे अपने ही विद्यालय के आसपास के भट्ठों में कुछ मजदूर जो काम करते थे, उनके बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि जागरूकता नहीं थी। मैंने और मेरे पूरे विद्यालय के सहयोगियों ने उनसे मिलकर बात करके उनके बच्चों को विद्यालय लाना शुरू किया। गांव के बच्चे उन मजदूरों के बच्चों के साथ बैठना तक नहीं चाहते थे। उन बच्चों को भी बहुत समझाया गया कि शिक्षा का अधिकार सभी का है, और आज यह स्थिति है कि वही ग्रामीण क्षेत्र के हमारे अन्य बच्चे उन भट्टे के मजदूरों के बच्चों को स्वयं शिक्षित कर रहे हैं, अपने साथ पढ़ा रहे हैं और मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह सब सफल तभी हो सकता है जब हम सब जागरूक हों और ये महसूस करें कि शिक्षा ही जीवन में परिवर्तन लाने का आधार हो सकती है, यही बाल श्रम को दूर कर सकती है, बाल श्रम से हमारे बच्चों को बचा सकती है। अभिभावक की जागरूकता नहीं है, लेकिन हम सब तो पढ़े लिखे हैं, हम सब तो समाज के एक शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक एक बच्चे को भी यदि हम पढ़ा सकें तो धीरे धीरे हम समाज के मुख्य धारा से सभी बच्चों को जोड़ सकेंगे। और विद्यालय में हमारे अब तो यह स्थिति है कि जो बच्चे भट्टे से आते हैं, उन्हें हमने समाज के कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों के साथ जोड़ दिया है। एक क्लब के माध्यम से हमने कुछ साइकिलें उन बच्चों को उपलब्ध कराई हैं, और क्लब के सदस्यों ने अपने ही बच्चों की पुरानी साइकिलें दी, जिससे अब भट्टे के बच्चों के लिए दूरी कम हो गई और वो विद्यालय तक प्रतिदिन आते हैं और उनके अंदर एक अलग ही उल्लास है विद्यालय आने का। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास करें और आइए आज के दिन यह संकल्प लें कि हम सभी बच्चों की शिक्षा और जो भी बच्चे हमारे समाज में आसपास हमें मजदूरी करते दिखाई देते हैं, उनको हम शिक्षा से जोड़ें

0: और इस पूरे समाज को आगे बढ़ाएं। जो बच्चा विद्यालय नहीं आ पाता, जब उसके मन में यह इच्छा जगती होगी कि काश मैं भी काखा गाघांगा सीख पाऊं, तो उसके मन के विचार को ही मैंने कविता में पिरोया है। हम का काखा गाघांगा पढ़ाई दिया गिनती सिखाई दिया ना, हम का काखा गाघांगा पढ़ाई दिया गिनती सिखाई दिया ना, जो हम कर बे पढ़ाई जग के कर बे भलाई, जो हम कर बे पढ़ाई जग के कर बे भलाई, हमें दुनिया में नाम कमाए दिया गिनती सिखाए दिया ना, हम का काखा गाघांगा पढ़ाई दिया गिनती सिखाए दिया ना।
1: सखी सहेली देखो, अनामिका मिश्रा भी नहीं कितने अच्छे से बताएं कि शिक्षा और प्रेम से संवारे बचपन, यानी शिक्षा तो दें ही साथ साथ प्रेम भी अपने लड़कन बच्चन का जरूर दें। और जहां तक पढ़ावे लिखावे की बात है ना, तो देखो गणेश कुमार सिंह भैया कैसे गीत का जो है पढ़ावे लिखावे की बात कर लेके जो है गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। चलो सुना जाए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
7: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
6: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर,
7: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
8: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: तो सखी, अब बात करी थे ऐसा योजना के जो उनकी गर्भवती और नवजात बच्चा की माई खातिर बहुत जरूरी है। ये योजना के नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। बनी घर में जब नन्ना मेहमान आवे वाला होता है तो पूरा परिवार खुश हो जाता है, और यही समय है गर्भवती महिला के अच्छे से ध्यान रखे गए। देखो सखी, गर्भावस्था के दौरान सही खान पान, समय समय पे जांच और आराम बहुत ही जरूरी होते हैं। मतलब कई बार जानकारी के अभाव में या कभो कभो आर्थिक कमी के कारण महिला बहनें अपन देवभर नायके पोतिन। तो बहनी, ये योजना के उद्देश्य यही है कि गर्भवती और स्तनपान करावे वाली महिला का कुछ आर्थिक सहायता भी मिले, जैसे वे अपने स्वास्थ्य के भी ध्यान रख पावे और अपन लड़कन बच्चन के भी। और भाई, जब अपन लड़कन बच्चन के स्वास्थ्य बढ़िया हुई, उनके ध्यान दे पई हैं, तो उनके बच्चा भी स्वस्थ हुई, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी जो उन्हें लगातार बहिनन का जागरूक करत रहा थी, नौकरी ताएं वे घर घर जा थी और उनका जागरूक करा थी। और सखी सहेली, यहू ध्यान दे के चाहिए कि जैसे ही गर्भ ठहरे ना, वैसे ही स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपन पंजीकरण जरूर करवाएं, साथ ही नियमित जांच भी करवाएं। जब एक कार्ड बन जाता है, जब जांच के दिन दिन जाता है, तो वो दिन पे जांच जरूर करवाएं। आयरन, कैल्शियम और डॉक्टर द्वारा दी गई जो दवाई है समय समय पे जरूर खाएं। साथ ही पौष्टिक भोजन है, हरी सब्जी, दाल, दूध, फल जरूर लें। मैंने एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ परिवार के नींव होती, और यही गर्भवती और धात्री महिला की देखभाल पूरी परिवार के जिम्मेदारी भी होता है। तो हम तो कहते हैं पूरे परिवार के, अपन लड़कन बच्चा, अपन जो बच्चा होए वाला है, हो के और बच्चे की माँ के भी पूरा पूरा ध्यान रखे के चाहिए। और यही के साथ चलो सुना जाए बढ़िया।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: तो सगी सहेली नेक नेक गीत के साथ है, अब आगे बढ़ा चला जाए, लीन जाए कुछ बढ़िया बढ़िया टिप्स। देखो आजकल जो धूप है, चिपचिपाहट है, पसीना के उसे चमक कम हो जाते हैं। मुला चिंता के कोनो बात नहीं, आज हम बताए थे कुछ ऐसा टिप्स जेका अपनावे अपने चेहरा का नेक बनावे। मुल्तानी मिट्टी ले लें, अमन गुलाब जल मिलाए के घोल बनावे, चेहरा पे लगावे, 10 मिनट बाद धो दें, इससे चेहरा पे पसीना कम आवत है। तो भाई एका जरूर अपनावे, साथ ही साथ दिन भर में एक बार खीरा के रस और गुलाब जल का मिलाए के चेहरा पे लगावे, ये चेहरा की ठंडक भी देते हैं और ताजगी भी देते हैं। बाल का हफ्ता में 2 बार जरूर धुलें, साथ ही जब भी बाहर निकलें तो धूप के चश्मा है, टोपी है, छाता, ये सब लेके जरूर जाएं और खूब पानी पिएं। देखो ये सब करत रहें, अपन सेहत का ध्यान रखें। यही सब जानकारी के साथ ही भाई ये कार्यक्रम से अब विदाई के समय हो गए, तो अगले कार्यक्रम में नीक नीक गीत कौन ही और जानकारी के साथ ही फिर मिला जाए। तब तक के लिए मीतू का दे अनुमति, नमस्कार।

आकाशवाणी अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम आंगला। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी अयोध्या से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
0: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044055 पर।

0: अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

आकाशवाणी अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM एंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही है अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है, बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है।

0: वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
1: जी।
0: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
1: जी, हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
0: जी जी, मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
0: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
1: जी,
0: इसका शीर्षक है आशियाना।
1: आशियाना शीर्षक।
0: जी जी। ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए, आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो मैडम
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजरे बोल रही हूँ मैडम, मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में
0: जी,
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं
0: जी। तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की
0: जी। मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं?
1: ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते
0: जी। तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: हैं? से घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं।
0: अच्छा,
1: जॉब वाले तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश, ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, आप ही की पसंद का सुनते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है। जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली
0: जी।
1: तो मैं वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से है बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम करते हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए जड़ से उपचार करने हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा, अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपने काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है।
0: अच्छा।
1: और बालाघाट है।
0: जी बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी। हाँ जी जी
0: जी। तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं।
0: जी
1: देवर के एक है, एक मेरा हूँ।
0: हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं छोटे दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी। हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ जी।
0: जी
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे हाँ। गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई है नमन करी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, सालगाना का इंदौर से मैडम।
0: जी ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ, गाने के बोले दिल का सुनना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

साथियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240।

0: 02462 मुंबई का एसटीडी कोड है 022 अंग्रेजी में 02240024662 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288 मुंबई का एसटीडी कोड है 022 अंग्रेजी में 02228670288 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारे इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे, आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थीं। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थाम कर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है।
1: मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो।
0: वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं।
1: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
0: तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
1: तुम पहले नाश्ता करो।
0: नहीं।
1: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
0: पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छन कर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
1: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
0: क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला।
1: प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
0: पर बताना तो पड़ेगा ना?
1: पता नहीं।
0: उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू।
1: प्रेम?
0: ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
0: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
1: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
0: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के एक कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और

उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना। बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली, क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई। लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

की गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहाँ अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुरा कर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे, आखिर क्या कहें। मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया, अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देख कर खुश थी तो दूसरी और अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज

डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दूर जमा दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी, वो किसी खुशनुमा फूल

तरह खिल रही थी, जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना में हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले, लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा, लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही, लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। नहीं तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं, कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे, ये बता अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। 2 दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है, और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी, लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। 1-2 बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहाँ उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहाँ अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे?
1: मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ।
0: फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया।
1: नहीं आई बस।
0: अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे।
1: क्या?
0: मिलकर बताती हूँ।
1: अरे बताना।
0: नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा।
1: पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे। अंजलि झुंझला उठी।
0: अरविंद के बारे में है।
1: अरविंद?
0: हाँ।
1: क्या हुआ अरविंद को?
0: कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली।
1: अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में?
0: आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ भी।
1: मैं आऊँ यूनिवर्सिटी?
0: नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा,
1: तुम मेरा इंतजार मत किया करो।
0: अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
1: ये क्या कह रहे हो और क्यों?
0: जोर से बादल

0: गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि के आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा, लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं, जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ, मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना। पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला।

0: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा, शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। वॉल्यूम को कर लीजिए फुल, क्योंकि आपकी दोस्त दिशा श्रीवास्तव लेकर आ गई है मजेदार संगीत और बातें। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। और बढ़िया हूँ भी क्यों ना, जब रखते हैं हम और पूरी युववाणी टीम आपका इतना ख्याल ढेर सारी बातों और मनोरंजन के साथ। तो बिना किए देर चलिए फटाफट से जान लें कि क्या होगा खास आज आपके लिए कार्यक्रम युववाणी में। आज चर्चा में बात होगी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की, साथ ही चलेंगे गैंगटॉक सेगमेंट स्थान में, करेंगे वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग सेगमेंट शब्दावली में, और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि होंगे गीत संगीत, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आपके आकाशवाणी का उद्देश्य ही यही है कि जन जन तक पहुँचे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। तो बिना किए देर चलिए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट चर्चा की ओर। दोस्तों आज है 12 जून और ये दिन समर्पित है बाल श्रम निषेध, यानी आज के दिन हम मनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बचपन कितना प्यारा समय होता है खेलने, सीखने, सपने देखने और भविष्य संवारने के लिए। लेकिन दुनिया भर में आज भी करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाकर भविष्य संवारने की बजाय मजबूर हैं खेतों, कारखानों और दुकानों पर काम करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हिसाब से अभी भी लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं।

इनमें से लाखों बच्चे ऐसे काम करते हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के लिए खतरनाक हैं। बाल श्रम सिर्फ बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि ये समाज और देश के विकास में भी बाधा है। जब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है तो उसका भविष्य सीमित हो जाता है और वो गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है। ये समस्या सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, परिवारों की आर्थिक मजबूरियां इस समस्या के बने रहने का कारण हैं। कई बार परिवारों की आय इतनी कम होती है कि बच्चों को कमाने के लिए काम पर भेजना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाल श्रम को खत्म करने के लिए सिर्फ एक कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसके लिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देना और वयस्कों के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर बढ़ाना भी जरूरी है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी ऐसे बाल श्रम को रोकिए जहां पर आप कर सकते हैं ये काम। दोस्तों, अब चलिए सुनते हैं प्यारा सा गाना फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, जिसे शब्दों से पिरोया है जयदीप साहनी ने, संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने और आवाज दी है रूप कुमार राठौड़ ने।

0: हमने सुना फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का ये प्यारा सा गाना। अब बारी है कि हम चलें रेडियो तरंगों के माध्यम से एक ऐसे शहर जो प्रकृति, शांति और रोमांच से भरपूर है। पूर्वी हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत पहाड़ी शहर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। गैंगटॉक पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग से बागडोगरा एयरपोर्ट या रेल मार्ग से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। वहां से सड़क के रास्ते से लगभग 4 से 5 घंटे में गैंगटॉक पहुंचा जा सकता है। रास्ते में बहती तीस्ता नदी और हरे भरे पहाड़ सफ़र को बहुत ही यादगार और शानदार बना देते हैं। साथ ही गैंगटॉक में घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं। एमजी मार्ग यहाँ की सबसे फेमस प्लेस है और यहाँ पर स्थानीय संस्कृति बाजार का आप मज़ा ले सकते हैं। ताशी व्यू पॉइंट ये भी काफ़ी फेमस जगह है वहाँ की, और हनुमान टोक, गणेश टोक से हिमालय की बर्फीली चोटियों का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। गैंगटॉक से लगभग 40 किलोमीटर दूर छांगू यानी सोमगो झील लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। ऊंचे पहाड़ों के बीच ये झील हर मौसम में अलग अलग रंगों से खुद को सजा लेती है और इसे देखने के लिए पर्यटक भीड़ लगा लेते हैं। इसके अलावा नाथुला पास भारत चीन सीमा पर एक ऐतिहासिक और रोमांचक जगह है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। और अगर आप बौद्ध संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं तो रूमटेक मठ और एंचे मठ जरूर जाएं। इन मठों की तरह की शांति और जो आध्यात्मिक वातावरण होता है बहुत ही मन को सुकून देता है। और खाने की बात करें तो गैंगटॉक अपने टेस्टी खानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के मोमोज, थुकपा, गुंदरुक और फाग शाफा जैसी पारंपरिक व्यंजन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और रुकने के लिए गैंगटॉक में लग्जरी होटल से लेकर बजट फ्रेंडली आपको होम स्टे तक हर कुछ मिल जाएगा। और अगर आप एमजी मार्ग के आसपास रुकेंगे, मतलब ये मेन जगह है वहाँ की, तो आपको बाज़ार और अच्छे पर्यटन स्थल आपके काफ़ी करीब होंगे, आप आराम से आ जा सकते हैं वहाँ। और प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन और रोमांचक पर्यटन स्थलों के कारण गैंगटॉक हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर बुलाता है। आपको भी बुलाएगा। अगर आप जाना चाहिए तो अगली बार अपना प्लान यहीं के लिए बनाइए और हिमालय की खूबसूरती को बेहद करीब से देखिए। तो गैंगटॉक की यात्रा आपके लिए बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहेगा, तो ज़रूर जाइए अगर आप नेक्स्ट ट्रिप पर जाना चाहते हैं कहीं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
1: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी
0: के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। अब बारी है उस सेगमेंट की जिसमें हम बना

आते हैं अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग और शब्दों के खजानों में से कुछ नए मोती जोड़कर। जी हाँ, बात हो रही है आपके प्यारे सेगमेंट शब्दावली की। आपको बता दें, इस सेगमेंट में हम चार अंग्रेजी और एक हिंदी का शब्द जानते हैं। इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए, चाहे तो नोट या रिकॉर्ड कर लीजिए, जिससे आप लगातार इसका इस्तेमाल करते रहिए। पहला शब्द है पेनेशिया, यानी रामबाण उपाय। ये एक नाउन शब्द है, सिनोनिम है रेमेडी और एंटोनिम है हार्म। स्पेलिंग है PANACEA। सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देयर इज नो पेनेशिया फॉर ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी पर्यावरण की सभी समस्याओं का कोई एक रामबाण उपाय नहीं है। अगला शब्द है फेलिसिटी, यानी प्रसन्नता। ये एक नाउन वर्ड है, सिनोनिम है इसका हैप्पीनेस और एंटोनिम है सैडनेस। स्पेलिंग है FELICITY। सेंटेंस में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, द फेलिसिटी ऑन हर फेस वॉज इम्पॉसिबल टू मिस, यानी उसके चेहरे की प्रसन्नता को नजरअंदाज करना असंभव था। तीसरा शब्द है बेनेवोलेंस, यानी परोपकार। ये नाउन वर्ड है, सिनोनिम है इसका काइंडनेस और एंटोनिम है क्रुएलिटी। स्पेलिंग है BENEVOLENCE। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हिज बेनेवोलेंस अर्न्ड हिम द रिस्पेक्ट ऑफ द एंटायर विलेज, यानी उसकी परोपकार की भावना ने उसे पूरे गांव का सम्मान दिलाया। आज का चौथा शब्द है रेवरी, यानी दिवा स्वप्न। ये एक नाउन वर्ड है, स्पेलिंग है REVERII। सिनोनिम है इसका डे ड्रीम और एंटोनिम है रियलिटी। सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शी सैट बाय द विंडो इन अ रेवरी इमेजिनिंग हर फ्यूचर एडवेंचर्स, यानी वह खिड़की के पास बैठी अपने भविष्य के रोमांचक अनुभवों की कल्पना करते हुए देवा स्वप्न में खो गई। आज का हिंदी शब्द है, पांचवा शब्द जो है वो हिंदी शब्द है, और इसको हमारे जो शब्द है ये पांचवा वर्ड हमारा हिंदी रहता है। तो हमने चार अंग्रेजी के शब्द जान लिए और अब बारी है हमारे हिंदी के शब्द की। अनीप्सित, यानी इच्छा ना होना। ये एक विशेषण शब्द है, वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उसे पद और प्रतिष्ठा में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वह अनीप्सित भावना से जीवन जीता रहा। तो ये थे चार अंग्रेजी और एक हिंदी के शब्द। उम्मीद है आप इन शब्दों का लगातार इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये आपको याद हो जाएंगे। और अगले शुक्रवार मिलेंगे आपको नए शब्द शब्दावली में, तो उनका भी इसी तरह करिएगा इस्तेमाल। ऐसे लगातार इस्तेमाल करने से आपके पास कब वो कैप्स का रिच बंडल तैयार हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म एयरलिफ्ट का प्यारा सा गाना, जिसे शब्दों से पिरोया है कुमार ने, संगीत से सजाया है अमाल मलिक ने, और आवाज है अरिजीत सिंह की।

हमने मिलकर गुनगुनाया प्यारा सा गाना फिल्म एयरलिफ्ट से। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है, ऐसे में गर्मी बढ़ना और लू चलना बहुत ही सामान्य बात है, पर असामान्य हो जाता है इसे झेलना। लेकिन अगर हम कुछ आदतें अपना लें तो इन परेशानियों से आसानी से निपट सकते हैं। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान ना सिर्फ हमारी दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारी सेहत पर भी बुरा असर डाल रहा है। ऐसे में एक बात बार बार कही जाती है, हाइड्रेट रहिए और धूप से बचिए। दोस्तों, गर्मी में हमारे शरीर से पसीने के रूप में काफ़ी पानी निकल जाता है। अगर हम समय समय पर पानी ना पिएं तो शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे थकान, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना और कंसंट्रेट करने में परेशानी जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि दिन भर में रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीते रहिए। सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीना पर्याप्त नहीं है। बाहर काम करते हैं या धूप में ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, यात्राएं करते हैं, तो ORS, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी और सत्तू पीजिए। दोपहर के समय, खासकर 11 से 4 बजे तक शाम को ना निकलिए, क्योंकि इस वक्त धूप बहुत तेज़ होती है। और अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो सिर को ढक कर निकलिए, हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने और अपने साथ पानी की बॉटल ज़रूर रखिए। बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को विशेष रूप से सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि गर्मी का असर सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी इन्हीं लोगों पर पड़ सकता है। गर्मी से बचने के लिए बड़े उपाय की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी सावधानियां शामिल कर लीजिए। पर्याप्त पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, धूप से बचिए और अपने आसपास के लोगों को भी यही सलाह दीजिए। तो उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। चलिए

अब आगे बढ़ते हैं और मिलकर गुनगुनाते हैं प्यारा सा गाना फिल्म सुल्तान से, जिसे शब्दों से पिरोया है इरशाद कामिल ने, संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने और आवाज है राहत फतेह अली खान की।

हमने सुना प्यारा सा गाना फिल्म सुल्तान से। अब टिक टिक करती घड़ी की सुई कह रही है कि वक्त हो गया है विदा लेने का, पर दिल कह रहा है कि बस कुछ पल और। तो सुनते हैं दिल की और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, और इन्हीं पलों में आपको बता दें कि कल यानी कि शनिवार को क्या होगा खास आपके लिए। युववाणी में चर्चा में बात होगी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की। हमारी धरोहर में बात करेंगे पट्टिदकल के स्मारक समूह की, और आर्थिक जगत में बात होगी नो फ्रिल्स अकाउंट की। तो ये थी जानकारी कल आने वाले कार्यक्रम की। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको मेरे यानी दिशा श्रीवास्तव के साथ बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कार्यक्रम लिखकर बताइए हमें।

हमारी ईमेल आईडी yuvvani@gmail.com पर, साथ ही करिए कमेंट आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक और इंस्टाग्राम के युवाणी रील पर, करिए 830-321-9911 पर व्हाट्सएप मैसेज। ध्यान रखिएगा कि मैसेज के पहले कैपिटल लेटर्स में AKB जरूर टाइप कर दें। इसी बात के साथ आपको बता दें कि आज आपने युवाणी का सफर तय किया अपनी दोस्त दिशा श्रीवास्तव के साथ। मिलेंगे नए अंक में नए विषयों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी युवा साथियों ने सुना अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
5: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
6: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
4: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
5: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं।
7: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
0: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं छोटेलाल प्रजापति व साथियों की आवाज में ये देवी गीत।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161873347।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शिव नारायण शर्मा व साथियों की आवाज में ये देवी गीत।

0: शिव नारायण शर्मा व साथियों के गाए इस देवी गीत के बाद आइए अब सुनते हैं बालश्रम साक्षरता गीत।
1: अरे पढ़ावा लिखावा हम

0: इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: कर आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा

अभी आपने सुना समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में, जिसे हमने अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी। शाम सुहानी कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं पैडमैन फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है कौशर मुनीर का, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
0: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: शाम सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सुपर 30 से। आवाजें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। गीत है अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत दिया है अजय अतुल ने।

इसी के साथ शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: वार्ताः
1: अभी आपने सुना संस्कृत में समाचार, जिसे हमने अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन EIR ऐप पर। लीजिए सुनिए लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजेश्वर गांव की।
2: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
1: गुंजेश्वर गांव के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं मालिनी अवस्थी की आवाज में ये लोकगीत।

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं रत्नेश द्विवेदी व साथियों की आवाज में ये सोहर।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी आपने सुना लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
3: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
2: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
3: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
2: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
3: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
2: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
4: पंचो जय हिंद। पंचो देखो, आज एक खास दिवस है, वैसे तो हर दिवस अपने आप में खास होता है और हर दिवस के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई, कुछ का इतिहास होता है, बड़प्पन होते है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। अपने सब जोने समाज में रही थे, जोने गांव घर में रही थे, जोने परिवेश में रही थे, एक स्थिति इस देखात है जब अपने सबका सोचे के लिए विवश हुए पड़त है कि जोने गेदहरा के हक शिक्षा दीक्षा कहे, जोने के हक एक अच्छे पोषण कहे, जोने के हक एक अच्छे स्वास्थ्य कहे, एक अच्छे कपड़ा लत्ता कहे, उ हक व का हासिल न हो कि कहूँ न कहूँ वो करे जो अधिकार हैं, मानवीय अधिकार जितना कुछ संविधान प्रदत्त हैं, वही अधिकार के साथ है हम सब ही कहूँ न कहूँ अन्याय करी तहन, कहूँ न कहूँ वो का वही अधिकार से वंचित करी तहन। पंचो आज यानी 12 जून का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल हम पंच मनाए थे, वो कई उद्देश्य खाली यह हुआ थे कि बाल श्रम का कौने हद तक हम सभी रोक सकी थे। बाल श्रम के खिलाफ पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ावे खातिर और ओकरे प्रति लोगन के मन में संवेदना पैदा करे खातिर यही दिन का हम पंच 12 जून के रूप में मनाई थे। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है सन 2002 में एक शुरुआत सबसे पहले की, एक उद्देश्य से बाल श्रम के जो भयानक परिणाम है ओकरे प्रति लोगन का जागरूक बना हुआ है और लोगन का यह बात के लिए चेतना उनके मन में जगा हुआ है कि जौने से वह भयावह स्थिति आवे के पहले सचेत हो जाएं और जौन अपन गेत

0: गिदहरे, अपने आस पड़ोस की गेत गिदहरे, अपने गांव समाज के गेत गिदहरे, कहूं न कहूं बाल श्रम से पीड़ित हैं, बाल श्रम से उनका उनके अधिकार ना मिल पाओत हैं, वो करे प्रति अपने सबका जागरूक रहे कहे, चैतन्य रहे कहे, उनका रोक एक प्रयास करे कहे। पंचो हर साल के वैसे तो कोनो कोनो थीम हुए थे। सन 2026 के जो संयुक्त राष्ट्र के थीम है वही है कि बाल श्रम के खिलाफ लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित अवसर और साथियों वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। ये संयुक्त राष्ट्र के थीम है जो निर्धारित करती है कि अपने बच्चन का, अपने सब का सही दिशा दिए चाहिए, सही दशा दिए चाहिए और कुछ यश करे चाहिए, जौने से उनके जो मानवीय मूल्य हैं उनके रक्षा हम पंच कैसे की, उनके मानवीय मूल्य, उनके मानवीय गुणवत्ता का बारे में हम सभी विचार कैसे की और विचार कहे के बाद निर्णय ले सके कि आखिर जौनी दिशा में हम सभी चलित हम वो कहाँ जाए, ओके परिणाम कहाँ तक पहुँचे। यद्यपि यश ना है न कि वह हमारा सुधार ना है, बाल श्रम आज के 10-5 साल पहले जितना ज़्यादा रहा अगर हम सभी औसत रूप से सोची अपने दिमाग से तो हमारा बहुत कुछ सुधार आवा है, यह हमारा दूर आए ना इन्हें अवक कारण खाली शिक्षा दीक्षा और अपन सबके सकारात्मक प्रयास है। सकारात्मक प्रयास के परिणाम है कि बाल श्रम निषेध में कहूँ न कहूँ अपने सभी अभी काफ़ी आगे तक बढ़ गया है, लेकिन ओके उन्मूलन करब जरूरी है। बाल श्रम के उन्मूलन अपने सबके आवश्यकता है, समय के आवश्यकता है, देश के भूख है जेका कहा जाए। गेद गिदहरे अपन आगे बढ़े, उनका हर तरह के संवैधानिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, मौलिक जितना अधिकार हैं उस सब मिले, ये अपन प्रयास हमेशा रहा है कि अपनी आव वाली पीढ़ी का, अपने गेद गिदहरन का वो सब कुछ दे के जाई जो उन्हें उनका आवश्यकता है, अपने सब जो उनको झेले ही वो चीज अपने गेद गिदहरा बाल बच्चन का न झेले पड़े। पंचो हर गिदहरा के अपन एक अभिरुचि होते, योग्यता होते, अभिक्षमता होते, अगर वक प्रदर्शन में कहूँ शिक्षा दीक्षा पालन पोषण बाधक बना थे तो हमें लागत है कि मानवीय मूल्य जोन है वक हरण हुआ थे और कहूँ न कहूँ हर तरह के अन्याय अपन सबके द्वारा दिखाए पड़त है और वो बाद में सोचे पता लागत जब वक्त गुजर जात है। यश नाय करे है हर तरह से अपने सबका गेद गिदहरन के कार्यक्रम, अपने जो विद्यालय हैं वहाँ करावे का है, जागरूकता कार्यक्रम करावे का है, तमाम जो प्राइवेट एजेंसी हैं सरकारी माध्यम है हर तरह से आगे बढ़ावे की जरूरत यह है। और पंचो आज ईमान के चला कि आज अपने सबका सौगंध लय के बाल श्रम निषेध अपन भागीदारी दिए का है और बाल श्रम के प्रति जागरूकता बढ़ावे में अपन पूरी भूमिका निभावे का है जौन आवश्यक हुए। फिलहाल समय कीमती है और एक कीमती वक्त ही अपने बीच में है। हरित खेती की नई पहचान, नवीनों प्रौद्योगिकी और किसान, एकरे बारे में जानकारी देते हैं डॉक्टर श्वेता कुमारी, तो आओ यह जानकारी के पंचों सभी मिलकर साझा की जाए। पंचों जैसे कि आप सबका पता है आज अपनी पंचेती में आई है डॉक्टर श्वेता कुमारी जो उनकी नैनो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं। आपसे हम सभी जानब कि हरित खेती की नई पहचान, नैनो प्रौद्योगिकी और किसान, यह पे हमारी चर्चा हुए, वार्तालाप हुए और हम पंच तमाम तरह के समस्या का निदान पाओ। डॉक्टर श्वेता जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले किसानन की तरफ से हम जाना चाहिए थे कि एक नई विधा है नैनो प्रौद्योगिकी, है काओ और किसानन के लिए कैसे महत्वपूर्ण?
1: सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। नैनो प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है जो खेती को अधिक लाभदायक बनाती है, कम खर्चीला और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस तकनीक में अत्यंत सूक्ष्म कणों का उपयोग किया जाता है। कृषि में इन कणों का प्रयोग उर्वरकों, कीटनाशकों और सेंसरों के लिए किया जाता है। इससे पौधों को पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से मिलता है, लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ने में काफी मदद मिलती है।
0: जी जी। अब जैसे नैनो प्रौद्योगिकी की बात होत है तो नैनो यूरिया काव है, कैसे के प्रयोग किसान भाई कौनी मात्रा में करें, यह जरूरी हो जाए पूछब। तो एक बारे में बता दें किसान पंचायत।
1: जी मैं किसान भाइयों को

0: बताना चाहती हूँ कि नैनो यूरिया एक तरल नाइट्रोजन उर्वरक है जिसकी मात्रा जो है 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। इसको 125 से 250 लीटर पानी में डिसॉल्व करते हैं, छिड़काव करते हैं इसका, और पहला छिड़काव जो होता है वो बुआई या रोपाई के 30 से 35 दिन बाद होती है, और इसका दूसरा छिड़काव जो होता है 45 से 50 दिन बाद होती है। और इससे नाइट्रोजन का बेहतर उपयोग होता है और उर्वरक की बर्बादी जो है वो कम होती है।
1: मुख्य जो उर्वरक है यूरिया के बाद डाई आवत है, तो डाई के बाद नकीन जाए तो हमें लागत कहूँ कहूँ कुछ अधूरापन रहे
0: जी।
1: नैनो डीएपी का है एक बारे में किसान पंचन को बताओ, एक फायदा कैसे है, एक उपयोग कैसे कीन जाए, हमारे किसान पंच कैसे करें, एक बेहतर जानकारी दें
0: जी। देखिए नैनो डीएपी जो है वो पौधों को फास्फोरस और नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाला तरल उर्वरक है जिसकी मात्रा 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ में होती है, ठीक है। इसको 200 से 250 लीटर पानी में डिसॉल्व करते हैं, मतलब मिलाते हैं 200 से 250 लीटर पानी में, फिर इसका छिड़काव करते हैं। इसका पहला स्प्रे जो होता है वो फसल की 25 से 30 दिन की अवस्था पर हो जाती है, और जो दूसरी स्प्रे जो इसकी होती है वो फूल आने से पहले होती है
1: जी।
0: इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधे मजबूत बनते हैं।
1: पारंपरिक रूप से जो अपने सब उर्वरक के प्रयोग करी थे और नैनो उर्वरक, एहमा दोनों में अंतर का है किसान भाई, एहमा कौन हिसाब से सामंजस्य बनावे कि बेहतर सामंजस्य बन जाए, उत्पादन उनका ठीक ठाक मिल जाए
0: जी। देखिए मैं किसान भाइयों से ये जानकारी साझा करना चाहती हूँ कि वर्तमान में नैनो उर्वरक को पूरक उर्वरक माना जाता है
1: जी।
0: किसानों को मिट्टी के परीक्षण और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही संतुलित उर्वरक प्रबंधन कराना चाहिए
1: जी। जी
0: जी
1: जो अतिरिक्त पोषक तत्व है उन्हों कुछ बात कह ली जाए, तो हम शुरुआत की जाए नैनो जिंक के, तो नैनो जिंक काव है और किसान एक बेहतर उपयोग कैसे करें एक बारे में बता दी
0: जी। देखिए नैनो जिंक जो है वो नैनो जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक का, और ये जिंक की कमी जो है वो दूर करता है फसलों
1: जी,
0: में
1: जी जी।
0: इसकी सामान्य मात्रा जो है 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ है, और इसको इसके 150 से 200 लीटर पानी में इसको मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इससे पौधों की वृद्धि बेहतर होती है, दानों की गुणवत्ता सुधरती है और उत्पादन बढ़ जाता है। 500 मिलीलीटर आपको 150 से 200 लीटर पानी में मिलाना है
1: हाँ।
0: और ये प्रति एकड़ की जमीन के लिए
1: लाभदायक
0: पर्याप्त होता है
1: जी। जी अब आवत है कुछ कीटनाशक की बात कर ली जाए, नैनो आधारित कीटनाशक जो होते हैं वो किसान के कैसे फायदा पहुंचावत है, ये के बारे में थोड़ी बताओ
0: जी। देखिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि नैनो कीटनाशक सीधे कीटों और रोगों पर प्रभाव डालते हैं, ये कम मात्रा में अधिक प्रभाव डालते हैं, और बार बार छिड़काव की आवश्यकता भी कम पड़ती है
1: जी।
0: ये पर्यावरण पर कम प्रदूषण भी डालते हैं और लागत में कमी भी लाते हैं। हालांकि किसानों को केवल प्रमाणित उत्पाद का ही उपयोग करना चाहिए
1: जी। जी
0: जी
1: मतलब प्रमाणिक जो उत्पाद है
0: जी।
1: वही प्रयोग के पे अच्छे जो रिजल्ट है वो उम्मीद की जा सके
0: जी। जी
1: नैनो सेंसर का होते है, ये हो एक नया आयाम है किसानन के लिए, एक बारे में थोड़ी बतावें और कैसे काम करते हैं, के बेहतर उपयोग किसान कैसे कह सकते हैं, एक बारे में जानकारी साझा
0: जी। नैनो सेंसर जो है वो खेत की मिट्टी में नमी, पोषक तत्वों और रोगों की जानकारी समय पर दे सकते हैं
1: जी।
0: इससे किसान भाई सही समय पर सिंचाई कर सकते हैं और उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर सकते हैं और रोगों की शुरुआती पहचान कर सकते हैं। इस तकनीक को भविष्य की स्मार्ट खेती मानी जाती है
1: सेंसर के माध्यम
0: जी।
1: जो हिसाब से जलवायु परिवर्तन होता है अब जो नई चुनौती है वो बढ़त जाती है, इससे निपटे मान जो नैनो प्रौद्योगिकी है वो के कितना उपयोग सार्थक दिशा में हो सका थे, ये के बारे में किसान पंचन के थोर के बता दे
0: जी। देखिए हाल के शोध बताते हैं कि नैनो आधारित कृषि उत्पादक पौधों को सूखा, गर्मी और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में सहायता करती है
1: जी।
0: ठीक है, इससे फसल नुकसान कम हो सकता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और उत्पादन स्थित रहने में मदद मिलती है
1: जी। प्रति हेक्टेयर भूमि के लिए नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के संस्तुत मात्रा कितनी हो सकत है, एका किसान पंचन का एक बार जरूर बताएं।
0: जी देखिए, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि एक हेक्टेयर में लगभग 2.47 एकड़ के बराबर होता है। यदि प्रति एकड़ 500 मिलीलीटर का उपयोग किया जाए तो नैनो यूरिया लगभग 1.25 लीटर प्रति स्प्रे यूज होगा और नैनो

0: डीएपी लगभग 1.25 लीटर प्रति स्प्रे यूज होगा। पानी लगभग 500 से 600 लीटर यूज होगा। यह मात्रा फसल और स्थानीय सिफारिशों के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है, जैसे फसल पे और जमीन पे थोड़ा बहुत माइन्यूट अंतर होता है, नहीं तो यही रेशियो रहेगा।
1: जी, किसान का नैनो प्रौद्योगिकी अपनावे में कुछ खास बात के ध्यान रखे पड़ता है, यही लिए कि नई विधा है, नया आराम है, नई चीज है हमारे सबके लिए, जो पारंपरिक जो खाद पानी रहा उससे हटके है।
0: जी,
1: कौन इस बात का ध्यान किसान पंचायत रखे मैडम कि जौने से उनका नैनो यूरिया या नैनो जो और उत्पाद हैं
0: जी,
1: उनके प्रयोग के बाद नुकसान की संभावना कम हुए।
0: जी, देखिए किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल प्रमाणित उत्पाद ही खरीदें, कृषि विभाग या कृषि वैज्ञानिक की सलाह लें, अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें, मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरक प्रबंधन रखें और नैनो उत्पादनों को संतुलित कृषि पद्धति के साथ अपनाएं। सही जानकारी के साथ उपयोग करने पर नैनो तकनीक किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है।
1: डॉक्टर श्वेता जी, कुछ और अगर बात किसानन के लिए आवश्यक हुए और आप किसान पंचन का बतावा चाहते हुए जोने की वजह से ई तकनीक उनके समझ में आसानी से आ जाए तो वो किसान पंचन को बताए।
0: जी देखिए, नैनो तकनीक जो है, नैनो प्रौद्योगिकी जो है, वो आज के जमाने का बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। अभी जितना अभी तक यूरिया यूज होता था या जो भी चीजें, तो आप देख रहे हैं कि मैं क्वांटिटी भी बताई हूँ कि जब हम नैनो तकनीक यूज करते हैं, उसका जब हम नैनो यूरिया या नैनो डीएपी यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में चीजें बहुत ही कम यूज होती हैं
1: जी।
0: और ऊपर से ये प्रदूषण भी कम फैलाती है, कम यूज होगी तो कम प्रदूषण फैलाएगी। अच्छा, ये नैनो पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही छोटे कण होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये पत्तों में, फसलों में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं
1: जी।
0: तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं
1: जी, जी।
0: तो अब क्या है कि जो चीज 1 kg, 2 kg, 5 kg यूज होता था, उसके जगह पे अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको खरीदना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लागत भी बहुत कम हो रही है। तो किसान भाइयों को मैं ये निवेदन करूंगी कि आपको इसका अगर नॉलेज, और भी अगर नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचिए, वहां के जो साइंटिस्ट हैं उनसे आप बात करिए, आप उनसे जानकारी लीजिए, और ये नए जमाने का तकनीक है, इसको जरूर अपनाइए, इससे आपकी खेती अच्छी होगी।
1: डॉक्टर श्वेता कुमारी जी, नैनो विशेषज्ञ की हैसियत से आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान पंचन का इतनी बढ़िया जानकारी इतने कम समय में उपलब्ध कर रहे हो, एकरे लिए आपका यही पंचायती की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पंचो, देखा जो नैनो टेक्नोलॉजी है यानी नैनो प्रौद्योगिकी, ये अपने सबके जीवन में, अपनी खेती बाड़ी के जीवन में एक नई क्रांति लावे वाली है, एक नई सोच है, नया आयाम है, एका अपनाई जाए कौन हिसाब से, यह पे बल दिए की आवश्यकता है, जोर दिए की आवश्यकता है, कुछ हमारा विशेषता है, खूबी है, एक नई पहचान बनावे की शक्ति है। अब का सोचा जाए, जौन खाद अपने सब ढेर सारी लाया के रखी थे घरे में 4-6 बोरी में, वही का नैनो पार्टिकल के रूप में अपने सब कम जगह में और कम पैसा में रख सके थे, यानी नैनो जोन नैनो टेक्नोलॉजी जोन है उकरे माध्यम से अपने दिमाग के सीधा सदुपयोग, यूरिया के रूप में हुए, डीएपी के रूप में हुए, जिंक के रूप में हुए, या फिर कीटनाशक दवा के रूप में, हर तरह से जोन नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित अपन नैनो उत्पाद है, ये अपने खेती बाड़ी के लिए नई सोच, नई पहचान है और बहुत कुछ नया आयाम संजोए है, जोने से आपन खेती चमके, खेती आपन खूबसूरती लाए और मत चमक आए। पंचो, एकरे बारे में अपने सबका गंभीरता से मंथन कर जरूरी है कि अपने सब जायत है, क्यों बतावा था कि नैनो यूरिया लेक है, तो हम कुछ पंचन के देखी थे कि वो दूर भागे कोशिश कर रहे थे, वो कहा थे परंपरागत रूप से जौन खाद अपने सब प्रयोग मलाई तहन वतने यूज हुए। अरे भाई, एक वक्त वह रहा जब रासायनिक उर्वरक के शुरुआत भय तो का ओकरे पहले लोग यूज कह रहे, प्रयोग मलाए रहे, ना ना, पहली बार कबन कबूत प्रयोग में हम पंच लाए हो बे तो हम

विनायक कहते हैं कि पूरी तरह से नैनो कृषि पर आधारित अपने सब नैनो उत्पादक प्रयोग करिए, लेकिन शुरुआत जरूरी है, नई पहचान जरूरी है, किसान का नई विधा अपनाऊ जरूरी है, और वो कई परिणाम जब सामने आए तो अपने आप समझ में आ जाए कि काव अच्छा है काव बुरा। पंचो, नयापन जरूरी है, लेकिन लोकगीत के माध्यम से अगर कुछ आधुनिकता दिखाए पड़े तो पंचो खुशहाली में अपने प्रयास सफल मान के ये खुशहाली का और ज्यादा बढ़ावे कोशिश क्या आओ सुना जाएगा उन्हें।

सैया छोड़ पुरान तरीका नई तकनीक ले आवाना। पंचो देखा अभिनंदन शुक्ला उनके साथी की आवाज में सुने न अपने सब कौने हमार जीव तो गदगद होएगा। उम्मीद करी थे पंचो तो सबका निक लाग हुए अच्छी चीज सबका अच्छी लागत है उम्मीद जरूर करी थे। पंचो अयोध्या मंडी से जोन बाजार भाव अपने सबका हासिल भा है अपनी झोली में है वहू का एक दूसरे के साथ साझा कर जरूरी है। आज जोन चाउर कामन का भाव रहा पंचो 3,050 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं दड़ा का भाव रहा 2,585 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का पीली एक भाव रहा 2,370 रुपया प्रति क्विंटल। करिए उर्दे जोन दाल रही 9,220 रुपये प्रति क्विंटल रही। चना देसी भाव रहा 6,400 रुपये प्रति क्विंटल। मसूरी 7,160 रुपये प्रति क्विंटल। अरहर के दाल 10,900 रुपये क्विंटल। आलू सफ़ेद यानी उजर की आलू भाव रहा 900 रुपये क्विंटल और ललकी प्याज रही 1,450 रुपये क्विंटल। टमाटर भाव रहा 2,200 रुपया। लहसुन 7,150। तरोई रही 1,125 रुपये प्रति क्विंटल। खीरा रहा पंचो 2,070 रुपये प्रति क्विंटल। भाटा 2,000 रुपये क्विंटल। हरी मिर्च भाव रहा 3,500। कोहड़ा 1,100। अदरक रहे 9,400 रुपये प्रति क्विंटल। शिमला मिर्च के भाव आज मंडी में रहा 2,850 रुपये प्रति क्विंटल। भिंडी रही 1,425 रुपया। लौकी भाव रहा 1,550 रुपया। करेला रहा 1,250 रुपया। केला पका रहा 2,800। और पपीता का भाव रहा वही हिसाब से 2,800। सेब आज मंडी में रहा पंचो 12,200 रुपये प्रति क्विंटल। अनार रहा 7,600। गुड़ बट्टी के भाव रहा 5,180 और चीनी के भाव रहा 4,125 रुपये प्रति क्विंटल। लगे हाथ पिछले 24 घंटा जो हाल चाल रही वह जान लीन जाए। पिछले 24 घंटा में पंचो जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा। जबकि न्यूनतम तापमान जो रहा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ये 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा। अधिकतम आर्द्रता रही 77% और न्यूनतम रही 54%। हवा की गति रही 6.9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दिशा रही उत्तरी पूर्वी। वर्षा शून्य रही। आने वाले 24 घंटा के बारे में फिलहाल ये अनुमान है कि हल्का फुल्का बादल छाए रहे। कहूँ कहूँ गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सका थे। पंचो बिहान अपने यही पड़ाव में किसान वाणी कार्यक्रम हुए। फिर मिला जाए यही वादा के साथ मनोज भैया का देनमती। जय

मिनट पर होगा कार्यक्रम महफिले गजल। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सुबह 7:15 पर होगा कार्यक्रम विवरण। 7:30 पर सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:15 पर होगा कार्यक्रम सुर संगम। कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें कल आज का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, झलकी होगी बहू की तलाश और होगा फिल्म संगीत व समाचार पत्रों से। कल सुबह 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 पर होगा कार्यक्रम बातें आसपास की। 11:55 पर होगा कार्यक्रम विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग। दोपहर 1 फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो अयोध्या। कल दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 2 होगा कार्यक्रम गीतांजलि। कल 2:30 पर होगा कार्यक्रम नारी जगत, जिसमें कल होगा कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय होगा क्या अपने आसपास पाया है दहेज का लेन देन और चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता दिवस पर। कल शाम 5 युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी, जिसमें चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर। हमारी धरोहर में होगा पट्ट दकल के स्मारक समूह और होगा आर्थिक जगत में नो फिल्स अकाउंट। कल शाम 5:30 पर होगा कार्यक्रम लोक संगीत। 6:10 पर कार्यक्रम शाम सुहानी। 6:30 पर होगा कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें कल चर्चा होगी हरी खाद का महत्व विषय पर। भेंट वार्ता होगी ग्रीष्म ऋतु में दुधारू पशुओं का पोषण प्रबंधन विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर धर्मेश तिवारी, भेंट करता होंगे आलोक कुमार गुप्ता और होगा लोकगीत व बाजार भाव। कल 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार से, जिसमें कल चर्चा होगी गीतकार प्रेम धवन की। 9:15 पर होगा महफिल गजल। 9:30 पर होगा कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन, 9:15

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल, कहा अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन।

0: करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ, कहा नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम, साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
2: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है, और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज़

0: air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दिशा से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
2: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन JEE एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
0: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और IIT कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अभी आपने सुना प्रादेशिक समाचार जिसे हमने अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बात

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: शिवहरी के संगीत निर्देशन में ये था जावेद अख्तर का लिखा दो गाना। अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाजें थी। फिल्म का नाम था सिलसिला।
1: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज है। फिल्म का नाम

इंद्रधनुष के तहत आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। अली सरदार जाफरी का कलाम, गायक स्वर जगजीत सिंह का।

तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो तुम मौजूद थे, आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए। तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो तुम आए थे रात के सीने में मेहताब की खंजर की तरह। अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में अली सरदार जाफरी का ये कलाम। और आइए अब सुनते हैं

मेरी आंखों में ढूंढता क्या है, आंसुओं के सिवा अब बचा क्या है। छाया गांगुली की आवाज में अभी आपने अहमद वसी का ये कलाम सुना।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को अभी आपने सुना कलाम इब्राहिम अश्क का था। और अब इंद्रधनुष के तहत कार्यक्रम गुलदस्ता संपन्न हुआ।

0: शर्मा और निर्देशक दीना नाथ।
1: कौन?
2: मेन साहब मैं।
1: कौन? अब्दुल करीम, तुम चाय देकर नहीं आए?
2: हुजूर मेम साहब, मैं क्या करूं? साहब कहते हैं पहले उन्हें दे आओ, आप कहती हैं उन्हें दे आओ, मेरी तो कोई सुनता नहीं।
1: तुम्हारी?
2: जी, मैंने साहब से कहा आप ही मान जाइए, और अगर नहीं मानते तो मैं डबल चाय ले आता हूँ, आप भी इधर ही पी लीजिएगा, लेकिन वो मानते ही नहीं।
1: क्या कहते हैं?
2: कहते हैं अब्दुल करीम, मैंने कल उनके साथ इतनी गुस्ताखी की कि आज किस मुंह से चाय पीने उनके पास जाऊं।
1: तुमने क्या कहा?
2: मैं क्या कहता हुजूर मेम साहब, जी में आया कि कह दूं मेम साहब इतनी छोटी तबीयत के नहीं है, पर हुजूर डर गया कि कहीं आप।
1: इसमें डरने की क्या बात, गलत फहमी में ऐसा हो ही जाता है। मेरे दिल में तो अब कोई बात नहीं, वो आना चाहे तो शौक से आ जाए, मैं ऐसी तो नहीं कि वो आए और मैं कोई बद अखलाकी बरतूं।
2: बस तो हुजूर, मैं तो आपके हुक्म के इंतजार में था, मैं अभी जाकर कहता हूँ।
1: लेकिन सुनो तो।
2: हुजूर अब तो आकर ही सुनूंगा।
1: उफ़ो।
2: साहब साहब जल्दी से तैयार हो जाइए।
3: लेकिन किस बात के लिए?
2: दावतनामा कबूल करने के लिए।
3: कैसा दावतनामा?
2: हुजूर मेम साहब ने एक हल निकाल लिया, फरमाया दोनों में से कोई भी अगर पहले चाय नहीं पीना चाहता तो फिर दोनों साथ पी ले। साहब को बोलो अगर एतराज ना हो तो मेरे ही कमरे में पी ले।
3: क्या उन्होंने कहा है?
2: जहां खुद कहा है, इसलिए आप तैयार हो जाइए, बंदा सिंगल के बजाय डबल ट्रे लेकर हाजिर होता है।
1: एक कप और लीजिए।
3: बस बस, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो मैंने 3 कप पी लिए, वरना एक से ज्यादा मैं कभी नहीं पीता है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ।
1: इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तो जैसे ही अब्दुल करीम ने कहा कि साहब कहते हैं कल के वाक्य के बाद वे किस मुंह से चाय पीने मेरे कमरे में आए।
3: जी, अब्दुल करीम ने क्या कहा?
1: यही कि आप उसकी बात मानकर चाय पीने यहाँ आ जाते, लेकिन।
3: किसकी बात मानकर?
1: अब्दुल करीम की।
3: आप क्या कह रही हैं?
1: क्यों?
3: अब्दुल करीम ने तो मुझे ये कहा कि आपने ये हल निकाला है कि अगर दोनों चाय पहले पीना ना चाहें तो फिर दोनों साथ पी लें।
1: क्या?
3: जी हाँ।
1: यानी आपने खुद यहाँ आना नहीं चाहा?
3: कतई नहीं, मैं तो आपके बुलाने पर।
1: गलत, मैंने आपको नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाती?
3: तो मैं क्यों आता भला?
1: मुझे क्या मालूम?
3: लेकिन मुझे मालूम है, मैं इतना जलील नहीं हूँ कि।
1: तो क्या मैं इतनी जलील हूँ कि अरे घरों को?
3: देखिए, ऐसा मत कहिए आप।
1: तो आप भी मत कहिए।
3: मैं क्या कह रहा हूँ?
1: आपने कहा नहीं कि मैं इतना जलील नहीं, तो क्या मैं इतनी जलील हूँ?
3: नहीं नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो उल्टा आपका शुक्रिया अदा किया था।
1: तो क्या मैंने खुशी जाहिर नहीं की थी? मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस बकबक और लड़ाई झगड़े से, इसलिए तो भागकर कश्मीर आई थी।
3: और मैं किस लिए आया था? आपको मालूम नहीं मेरी जिंदगी में कितनी तलखी है, लोगों की बेरुखी और नफरत से बचकर अमन चैन और खामोशी के कुछ सांस लेने यहां आया था, मगर मेरी बदनसीबी तो 4 कदम आगे चलती है, अपनी खुशी क्या हासिल करता, दूसरों की खुशी का दुश्मन बन बैठा।
1: और क्या मैं इस इल्जाम से बरी हूं सतीश जी? मुझ में क्या औरत बन रह गया है? नौकरी करके, टीचरों से लड़ लड़ के, घर वालों की खुदगर्जी और बाहर वालों की नफरत देख देख कर मेरे अंदर भी क्या कुछ कोमल भावुक कविता और कल्पना से भरा रह गया है। सतीश जी, मैं खुद सूखी नदी बन के रह गई हूँ, जिसके किनारे पर घास भी अपनी पत्ती खिलाना नहीं चाहती।
3: ऐसे न कहिए, ऐसे न कहिए संतोषी, ये आपका दोष नहीं है, ये जिंदगी, ये दुनिया, इसके लोग ही ऐसे हैं, ये सब ऊपर से देखते हैं, दिल में झांक कर कोई नहीं देखता। लेकिन मैंने भी ये क्या बात शुरू कर दी, आपका अच्छा भला मूड खराब कर।
1: नहीं नहीं, आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ।
3: अच्छा, तो बाहर आइए ना, देखिए क्या सुनहरी धूप है।
1: अरे हाँ आइए, हाय जरा गुलमर्ग को देखिए, कितना ओसीला, कितना हरा भरा और कितना आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला लग रहा है।
3: अरे सच, कल दोपहर आए थे तो बड़ा बासी बासी सा लग रहा था, पर अब ओस में नहाकर घास कैसी जगमगा रही है,
1: और हरी भरी घास के ऊपर से ये देवदार के काले काले जंगल, सच क्या कलर कंट्रास्ट है,
3: और उनसे ऊपर अलपत्थर की ये चोटी देखिए तो, बस क्या शीशा सी चमक रही
1: है। हाय सचमुच क्या प्यारी चोटी है, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे चांदी की बनी हो।
3: चलिएगा।
1: कहाँ?
3: वहाँ।
1: इतनी दूर? मेरा दिल कमजोर है।
3: आइए तो, कहीं तो लौट जाएंगे।

0: देखिए वो भी जा रहे हैं।
1: कौन?
0: वही दोनों।
1: वो मियाँ बीवी? कहाँ है?
0: वो देखिए जहाँ से जंगल शुरू होता है वो पोनियों पर।
1: हाँ हाँ, देखिए कैसे जा रहे हैं,
0: हाथ पकड़ रखे हैं एक दूसरे के,
1: बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे को।
0: हाँ।
1: उम्र की बात है, उम्र निकल जाती है तो सब कुछ निकल जाता है।
0: हाँ, सब कुछ निकल जाता है, बस बुढ़ापा रह जाता है।
1: हाँ, पर आप अपने आप को कैसे बूढ़ा समझने लगे?
0: क्यों? क्या मैं जवान लगता हूँ?
1: बिल्कुल।
0: आप अपने आईने में देख रही हैं।
1: क्यों, क्या मैं जवान लगती हूँ?
0: आप संतोष जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब इंसान जानता है पर ये नहीं जानता कि जवाब देने का उसे हक है कि नहीं। चलिए फिर, धूप तेज हो जाएगी।
1: चलिए।

0: ओह सतीश जी, आपने क्या किस्सा सुनाया, मेरा तो हंसते हंसते बुरा हाल हो गया।
1: ये बताइए, आपके कॉलेज के किस्से से मजेदार है या नहीं?
0: बिल्कुल, और आपका अंदाज जान तो उसने डाली
1: जी।
0: बिल्कुल, तभी तो बातों बातों में लगाकर यहाँ तक ले आए। सच मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी ऊंची जा सकती हूँ।
1: कामयाबी तो तब समझूं जब आपको चोटी तक ले जाऊं और फिर अलपत्थर की वो नीली झीलें दिखाऊं।
0: ना बाबा ना, मैं वहां तक नहीं जा सकती, मैं तो बस यहाँ बैठूंगी।
1: हाँ हाँ, तो फिर यहाँ नहीं, वहां पर उस चश्मे के करीब। कहते हैं इसका पानी शहद की तरह मीठा होता है।
2: मैंने कहा संतोष जी को क्या बता रहे हैं सतीश साहब।
1: अरे आप
0: आप यहाँ?
3: हम तो हैं, मगर आप लोग कब आए?
0: बस अभी अभी।
1: बात ये है चंद्र साहब, मैं आ रहा था और आप भी आ रही थी, मैंने कहा साथ चलते हैं, साथ हो जाएगा।
2: ये वाकई आपने बहुत अच्छा सोचा, साथ वाकई बहुत अच्छा होता है।
3: गुलमर्ग से भी अच्छा होता है
0: जी।
3: मैंने अर्ज किया कि साथ गुलमर्ग से भी अच्छा होता है, साथ हो तो हर चीज गुलमर्ग हो सकती है, साथ ना हो तो गुलमर्ग भी गुलमर्ग नहीं। क्यों संतोष जी?
0: जी जी हाँ जी हाँ, बाहर आकर कंपनी जरूर चाहिए। आप देखिए ना, आपसे मुलाकात हो गई, इनसे मुलाकात हो गई, इसलिए ऐसा लगता ही नहीं जैसे मैं अकेली आई हूँ। आप लोगों का क्या प्रोग्राम?
3: हम तो नीचे जा रहे हैं
0: अभी से।
2: हम काफी देर से आए हुए हैं और हमें लौटना भी है।
1: क्या आज ही लौट जाएंगे?
2: जी हाँ, कल हमें पहलगाम जाना है, आप ठहरिएगा।
1: जी हाँ, अभी कुछ सोचा तो नहीं लेकिन शायद एक रात और ठहरें।
3: और पहलगाम?
1: देखिए जाना तो है मगर गुलमर्ग भी कुछ कम खूबसूरत नहीं।
3: जी हाँ, गुलमर्ग कम खूबसूरत नहीं है। अच्छा तो हमें इजाजत है।
0: अच्छा देखिए, पहलगाम में मुलाकात हो शायद।
3: बेहद खुशी होगी। नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: देखा आपने?
0: क्या?
1: हम पर छींटा कसा।
0: पर मुझे बुरा नहीं लगा।
1: क्यों?
0: मालूम नहीं क्यों, उल्टा बहुत अच्छा लगा। आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों

0: गुलमर्ग, खिलनमर्ग, पहलगाम। सच सतीश जी, आपने मिलते तो ये सब कुछ मैं इतनी अच्छी तरह से न देख पाती।
1: और मैं संतोष जी, मेरी जिंदगी के ये 15 दिन ऐसे कटे हैं कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपका साथ, आपका हर वक्त मेरा ख्याल रखना, हम लोगों का एक साथ घूमना, चाय पीना, खाना खाना, ओहो, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं?
0: आप तो शुक्रिया अदा कर देंगे, पर मैं किस तरह आपका एहसान चुका सकूंगी? पहलगाम में तबीयत खराब होने पर जिस तरह 2 रातें आपने मेरे सिरहाने आंखों में काटी।
1: आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या ये इंसान का फर्ज नहीं होता?
0: फर्ज?
1: हाँ?
0: आप इस दुनिया में फर्ज की बात करते हैं सतीश जी? पिछले साल मुझे 21 दिन तक टाइफाइड चढ़ा था। मेरी माँ, मेरे 2 सगे भाई, मेरी 2 सगी भावजी घर में थी। सब मेरे रुपयों पे पलते हैं, लेकिन रात मेरे पास कोई नहीं सोया। दवा और पानी का गिलास रखकर सब चले जाते।
1: उनका जिक्र ना कीजिए संतोष जी। माँ, बाप, भाई, बहन, कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के होते हैं।
0: आप बिल्कुल

0: कहते हैं सतीश जी, मैंने घर वालों की खुशी के लिए शादी नहीं की, लेकिन मेरी खुशी की कोई नहीं सोचता। कोई शादी की बात भी करता है तो मेरी माँ कहती है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसे शादी की हाय नहीं है।
1: बिल्कुल मेरी जैसी बात है। घर पर कोई भी आता है तो कह देते हैं, नहीं साहब,

0: अपने कमरे में ही चाय पीऊंगा।
1: क्यों?
0: इसलिए कि आज आप चाय पिला देंगी, पर कल, कल के बाद तो फिर खुद ही चाय बनाना और खुद ही पीना होगा।
1: कल जरूर जाएंगे।
0: जाना ही होगा संतोष जी, एक दिन तो लौट नहीं होगा।
1: कुछ दिन और नहीं ठहर सकते?
0: ठहर सकता हूँ, पर दो चार दिन ठहरने से क्या होगा?
1: दो चार दिन के लिए भूली रहूंगी कि दुनिया बुरी होती है, लोग खुदगर्ज होते हैं, कोई किसी के दर्द की दवा नहीं बनता।
0: ये आप क्या कह रही हैं संतोष जी? मुझे मालूम नहीं कि मुझे ये कहने का हक है कि नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूँ, अगर आपने मुझे अपने लिए कुछ करने का कभी भी मौका दिया तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा।
1: और मैं क्या, मैं इतनी बदनसीब हूँ कि जिसने पहली मर्तबा मेरे दिल को यूं रखा मैं उसे लेती ही रहूंगी, तकलीफ ही देती रहूंगी?
0: ये मेरे लिए तकलीफ नहीं होगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। जिंदगी में मैं पहली बार महसूस करूंगा कि किसी ने मुझे अपना समझा है।
1: और मैं क्या, मैं कभी किसी को महसूस ना करा सकूंगी कि मैं भी किसी की हो सकती हूँ, मैं भी किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ?
0: संतोष जी,
1: मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना।
0: ये क्या संतोष जी, ये क्या पागलपन है? संतोष, ये क्या पागलपन है?
1: मुझे रोने दो, मुझे अपने फूटे भाग पे रोने दो।
0: रो मत संतोष, रो मत। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुमसे वो कह दूं जो आज तक मैंने ठुकराए जाने के डर से किसी से नहीं कहा, तो लो मैं कह देता हूं, मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो।
1: तुम सच कह रहे हो?
0: हाँ संतोष, मुझे अपना लो, क्योंकि अपनी जिंदगी की सूनी सड़क पर गुलमर्ग के रास्ते में खड़े सफेदे के पेड़ों की तरह तना नहीं खड़ा रहा जाता। मुझे सहारा दो, अपना साथ दे दो।
1: मेरे सतीश, तुम मेरा भी हाथ थाम लो, मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, पर जो बचा है उसे तो पा लेने दो।
0: मेरी

सफेदे के पेड़ अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका। लेखक रेवती शरण शर्मा थे और निर्देशक दीनानाथ। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM एंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
2: हेलो
3: सुनो, टेलीफोन नंबर,
4: माय नंबर इज
5: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: गीत गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बादल से। आवाजें ही सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, गीत समीर का।

गीत गुंजन कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म आन से। आवाजें हैं उदित नारायण, सबीर कुमार, सारिका कपूर की और संगीत है अन्नू मलिक का।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
3: नहीं अछूता हो जिस
2: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 1

0: 1111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बुलंदी से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, गीत है आनंद बख्शी का, संगीत दिया है बीजू शाह ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म दाग द फायर से आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और जसपिंदर नरूला की, गीत है समीर का, संगीत है राजेश रोशन का।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन EIR ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने

0: कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है।

0: शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले

0: रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मूज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी है, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मेहदी हसन की आवाज में ये गजल।

0: सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम महफिले गजल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब सुनिए कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
3: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240042 और 7800037222।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें।

0: और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
1: हेलो अयोध्या, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आप हमसे बातें करने के लिए हमारे नंबर 7376 80 40 90 इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बातें हमसे कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी पसंद के नगमे। हमारा नंबर है 7376 80 40 90। और देखिए, हमारे एक कॉलर लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं, हम इनसे बातें करेंगे। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम अनिल है, मगलसी गांव।
1: अच्छा अनिल जी, क्या करते हैं आप? हेलो,
2: हाँ,
1: क्या करते हैं आप?
2: हेलो,
1: आपको मेरी आवाज आ रही है?
2: सर, मैं अनिल मगलसी गांव से बोल रहा हूँ, जिला अयोध्या से।
1: अनिल जी, मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करते हैं?
2: हम इस समय आम की तुड़ाई चल रही है, हम आम तोड़ रहे हैं।
1: अच्छा, पके हुए आमों के बाग में है। कौन कौन सा आम है आपकी बाग में?
2: दशहरी, चौसा, लंगड़ा, सफेदा।
1: इन चारों आमों की किस्मों में सबसे अच्छा कौन सा आपको लगता है आम, अगर आप स्वयं खाएं तो?
2: सर, हमारे पास चार आम है, जो आपको पसंद है वो आम आपको अच्छा लगना चाहिए। हमारे पसंद से क्या होगा?
1: नहीं, अपनी पसंद तो बताइए।
2: अगर देखा जाए सबसे अच्छा लंगड़ा होता है।
1: अच्छा जी, लंगड़ा की खासियत क्या होती है जो आपको सबसे अच्छा लगता है?
2: सबसे मोटा दल होता है और बिजली छोटी मिलती है।
1: अच्छा जी, और स्वाद में कैसा होता है ये?
2: स्वाद में बहुत अच्छा होता है हमारे हिसाब से।
1: अच्छा जी, आम तो हमको अपनी पसंद अगर हम कहें तो वो आम अच्छा लगता है जो मीठे के साथ साथ थोड़ा सा खट्टा भी हो और मीठा मिक्स हो उसमें, वही आम मुझे अच्छा लगता है।
2: अच्छा,
1: हाँ जी, तो इस बार आपकी बाग में हम आम खाने आएंगे, आप खिलाएंगे? आप
2: बिल्कुल आ जाइए, आप तो एक एक दो दो टपकने भी लगा है।
1: क्या बात है, मतलब डाल से गिरा हुआ आम खाने का अपना ही मजा है कि नहीं?
2: एकदम बढ़िया।
1: गाना कौन सा आज सुनना पसंद करेंगे आप?
2: लाडला फिल्म का तेरी उंगली पकड़ के चला।
1: आहा, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से गाने की फरमाइश है आपकी।
2: हाँ, और सर एक काम करिएगा
1: जी,
2: पूरा गाना सुनाइएगा।
1: एकदम पूरा सुनाएंगे, एकदम आखिरी में जब खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तब हम दूसरी कॉल लेंगे।
2: हाँ, इसलिए लाइफ में पहली बार फोन लगा है और बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे।
1: पहली बार फोन लगा आपका?
2: हाँ, पहली बार लगा।
1: कितना दिन से लगा रहे हैं?
2: लगभग कुछ नहीं तो हमें एक साल के आसपास हो गया फोन लगा।
1: एक साल का आपका इंतजार आज पूरा हो गया और आज आपसे मेरी बात हो रही है।
2: हाँ,
1: हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि आपका फोन बार बार लगे और हम आपसे बार बार बात करें, और ऐसे ही आप अपने आम के बागीचे में आम तोड़ने का और उसको रखाते हुए रेडियो सुनने का पूरा पूरा आनंद लेते रहिए।
2: ठीक है, थैंक यू सर।
1: ओके, थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह के साथ और एक कॉलर और लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: हाँ जी।
0: कौन बोल रही हैं
1: जी?
0: नाम बताइए अपना।
1: अरे अभी तो बताई, श्वेता।
0: श्वेता नाम बताया आपने, और बताइए क्या करती हैं श्वेता जी आप?
1: कुछ नहीं, बस घर पे रहते हैं, घर के काम करते हैं।
0: घर के काम करते हैं, और बताइए क्या हाल चाल है? गर्मियाँ खूब पड़ रही है।
1: क्या जी?
0: गर्मी खूब हो रही है।
1: क्या आवाज साफ नहीं आ रही है?
0: मैं बोल रहा हूँ गर्मी खूब पड़ रही है।
1: जी जी, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, बारिश भी तो हुई थी।
0: बारिश हुई थी परसों, लेकिन कोई बहुत राहत तो नहीं मिली बारिश से।
1: लेकिन गर्मी तो फिर तो ऐसे हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है।
0: बहुत ज्यादा पड़ रही है इतनी गर्मी में। जब
1: गर्मी में जूस जूस पियो बढ़िया बना बना के।
0: हाँ, जूस की बात कही आपने, तो कौन कौन सा जूस गर्मी में पीना चाहिए?
1: जैसे गन्ने का जूस हो गया और बेल का जूस हो गया।
0: अच्छा जी,
1: नींबू नींबू पानी हो गए
0: जी,
1: और

0: और अनार अनार के जूस हो गए, मौसमी के जूस हो गए, सब पीना चाहिए गर्मी में।
1: सारा जूस पीना चाहिए गर्मी
0: पीना
1: में
0: चाहिए ज्यादा करके।
1: जी। और खाने में क्या क्या खाना चाहिए?
0: खाने में हरी सब्जियां, घिया हो गया, कद्दू हो गए और तोरी हो गए,
1: अच्छा जी
0: यही सब चाहिए, हरी सब्जी।
1: चलिए तो ठीक है। गाना
0: भिंडी हो
1: कौन सा
0: गए,
1: सुना
0: खीरे
1: दें?
0: हो गए,
1: गाना कौन सा सुना दें?
0: वही प्रेम रतन मन पायो।
1: अच्छा जी ठीक है, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: जी सर, नमस्ते सर।
1: नमस्ते जी।

0: धन पायो। और देखिए हमारे कॉलर लाइन पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। हेलो
1: जी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, नाम बताइए अपना।
1: मुल्कीपुर बारू बाजार अयोध्या।
0: और बताइए निशांत जी, क्या हालचाल है?
1: जी सर, बहुत अच्छा है और सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है। निशांत जी, अपने नाम का अर्थ बताएंगे? जी
1: सर, जो हमेशा शांत रहता हो वो निशांत
0: कहलाता है। ऐसा ही है, सही बता रहे हैं आप।
1: जैसा शब्द का अक्षर होता है नी प्लस शांत।
0: अच्छा, नी प्लस शांत होता है, हाँ, जो हमेशा शांत रहे। हमको तो लगता है कि निशा और प्लस अंत मिलकर के निशांत बनता है। पढ़ाई कितना किया है आपने?
1: सर गाना सुनना है सर हमें, सुहाग मूवी का गोरे गोरे मुखड़े।
0: वो तो मैं सुना दूंगा, पहले आप बताइए पढ़ाई कितना किए हैं आप? ग्रेजुएशन किया है आपने कि नहीं? हेलो निशांत जी,
1: आवाज क्या नहीं है?
0: आज आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपने पढ़ाई कितनी की है?
1: सर आपकी आवाज आप नहीं आ रही सर।
0: चलिए हम बता देते हैं, निशांत का अर्थ होता है निशा का अंत, जो रात्रि का अंत करे, जो अंधेरा को मिटाए, उजाले की तरफ अग्रसर करे, उसको निशांत कहते हैं। ठीक है जी, आगे से कोई पूछेगा तो आप जवाब दे पाएंगे, आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आवाज नहीं आ रही है। हेलो निशांत जी, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
2: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
2: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
3: मन का रेडियो बजने दे जरा।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या, अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह के साथ। कार्यक्रम में बने रहिए। 73 76 80 40 90

0: नंबर को डायल करके। और देखिए डायल किया है इन्होंने ये नंबर। हेलो हेलो, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कहाँ चले गए थे आप?
1: सर हम लाइट वाले हैदरपुर जलालाबाद से बोले थे।
0: हाँ जी, हैदराबाद जलालाबाद से बोल रहे हैं आप?
1: जी जी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: नहर की सफाई, नहर पे टहल रहे हैं।
0: नहर पे टहल रहे हैं
1: जी?
0: ये रात में नहर पे टहल रहे हैं, क्या मामला है?
1: सर आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आवती है।
0: अच्छा, हम कह रहे हैं रात में नहर पे टहल रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो टॉर्च वॉर्च लिए हैं हाथ में कि नहीं लिए हैं?
1: अरे मोबाइल का घर के बगल ही नहर है, कहा ज्यादा दूरी नहीं आना है।
0: अच्छा, घर के सामने नहर है, मतलब खाने पीने के बाद वहाँ टहलने जाते हैं आप? जैसे नहर पे जंगली जानवर सांप बिच्छू रात में ये सब होते हैं तो उसके लिए
1: नहीं, तो
0: जी
1: सफाइया हो जाता तो जंगल खत्म हो जाते हैं।
0: जंगल खत्म हो जा रहा है, ये जंगल खत्म होना क्या ठीक है?
1: नहीं, जंगल नहीं खत्म हो रहा, सरपट खत्म हो रहा है सर।
0: अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं, सरपट खत्म हो रहा है।
1: सरपट खत्म होता है, जंगल नहीं।
0: आजकल तो लोग छप्पर ऊपर भी नहीं बना रहे हैं, कम बनता है।
1: बस छप्पर ऊपर बहुत कम,
0: पहले सरपट की उपयोगिता बहुत ज्यादा थी, उससे लोग छप्पर बनाते थे और उसका जो फूल निकलता था उसकी जो डंठल होती थी उससे लोग सिकहुला बिनौठा जाने क्या क्या बनाते थे, सूप है कि नहीं?
1: अभी भी
0: बनता है बहुत सारी जगहों पे, अब लोग नहीं बनाते हैं। पहले तो गांव में जब हम लोगों का बचपन था तो हमारी दादी नानी चाची ये सब लोग सरपत का वही लेकर के उससे बल्ला बनाते थे, उससे बिनौठा बनाते थे। हैं
1: बल्ला बनाए के फिर उसका रंग
0: उसको कलर वलर करके इतना बढ़िया बनता था और जब उसमें गुड़ और दाना रख के खाया जाता था तो कितना आनंद आता था, है कि नहीं? अभी भी है गांव में कहीं कहीं। गाना कौन सा सुनेंगे ये बताइए?
1: आशा पिक्चर का सुना मैं सर।
0: आशा पिक्चर का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: शीशा हो या दिल हो,
0: शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। शीशा तो टूटता है सही है, दिल कैसे टूटेगा?
1: अरे अब महाराज जी सब सुनो, अपने बताओ मैंने गुरु जी हमारे है ना।
0: हाँ।
1: कहीं नवा उसकी फोन वाला आ गया तो वही अलग नवा मैं सुनवा दिया, ठीक बात।
0: गुरु जी से पूछिए उनका दिल कैसे टूटा।
1: तो सवेरे मिल गए नहीं शहादत पर आपसे मिल सकता है।
0: अब गुरु जी से आप पूछिएगा दिल कैसे टूटा।
1: गाना सुना है गुरु जी, सुनो सही।
0: गाना तो हम सुनाएंगे, गुरु जी का दिल कैसे टूटा ये आप पूछिएगा उनसे। उनसे पूछिएगा फिर फोन लगा के बताइएगा हमको दिल कैसे टूटा, फिर दिल को जोड़ने का हम तरीका बताएंगे।
1: ठीक
0: है, पक्का पक्का वादा करिए पूछेंगे आप?
1: पक्का एकदम, आपके फोन का उनसे लगे फोन लगा दी हम।
0: शरमाइएगा नहीं, एकदम गुरु जी से कहिएगा गुरु जी जिनको हम फोन किए थे वो कह रहे थे कि दिल कैसे टूटा गुरु जी से पूछना है। कहीं से जरूर टूटा होगा, दिल तो कहीं से भी टूटा होगा वो तो पूछना पड़ेगा ना, उन्होंने फरमाई जब की है दिल टूटा वाले गाने की तो टूटा होगा ही जरूर। हाँ तो उनसे पूछेगा कैसे टूटा, जब वो बता देंगे तब हमको कॉल करिएगा, हम बताएंगे कैसे जुड़ेगा। ठीक है,
1: ठीक है, एकदम
0: नहीं बिल्कुल आ जाइएगा। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके गुरुजी का पसंद का ये गाना।
1: ठीक है, नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा बसंतपुर, कटेहरी, अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त गणेश सिंह। बने रहिए हमारे साथ 7376804090 इस नंबर को डायल करके। और देखिए डायल किया है इन्होंने ये नंबर। हेलो
3: हेलो सर, नमस्ते।
2: नमस्ते जी, क्या हाल चाल है?
3: हेलो,
2: क्या हाल चाल है?
3: हाँ सर, आवाज आपकी कम आ रही सर।
2: हमारी आवाज कम क्यों जा रही? हम तो बोल रहे हैं।
3: हाँ सर,
2: हम कह रहे हैं हाल चाल ठीक है?
3: हाल चाल बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है।
2: छोटा रमना मौज में है?
3: हाँ, छोटा रमना बहुत मौज में है सर। अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना बहुत मौज में है सर।
2: हम समझ गए, आपका फोन इतनी जल्दी कैसे लग जाता है?
3: हाँ हाँ सर, लगता है। अभी अब आपसे बात तो हुई एक बार हमारी।
2: हमेशा फोन आपका लग जाता है
3: जी सर?
2: हमेशा आपका फोन लग जाता है, कौन सा जादू है आपके हाथ?
3: हाँ सर, बड़ी मेहनत करना पड़ती है ना।
2: तब बताइए क्या चल रहा है?
3: अरे सर, सब चल रहा है, काम धाम चल रहा है, सब ठीक ठाक है, एकदम फर्स्ट क्लास।
2: सब फर्स्ट क्लास है?
3: बस आपका रेडियो बहुत साफ है, हमारे प्रोग्राम इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि दिन भर दुकान पे बैठे रहते हैं, वहाँ सुनते हैं, इसके बाद शाम को घर आते हैं तब सुनते हैं।
2: कौन सी दुकान करते हैं?
3: दो रेडियो रखा है सर।
2: दुकान कौन सी करते हैं?
3: दुकान मेरी पान की है सर।
2: अरे वाह, पान की दुकान आपकी है।
3: अरे कभी कभी कभी कभार आइए आप एक बार।
2: अब पान तो हम खाते नहीं, तो हम कैसे पान की दुकान पे आ जाएंगे?
3: अरे ठीक है, पान पान ना खाइए आप, और कुछ खाइएगा।
2: अच्छा जी, ठीक है, आपकी दुकान पे आना पड़ेगा इसके लिए।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर।
2: अच्छा, आपकी दुकान पे हम कोशिश करेंगे कि पहुँचे किसी दिन। तो ये बताइए, पान की दुकान खोले हैं तो जब लोग पान खाने के लिए आज के 10 साल 15 साल पहले आते थे, उनका मिजाज और आज के लोगों का मिजाज में कुछ परिवर्तन हुआ है?
3: बहुत अंतर हो गया सर, बहुत अंतर हो गया।
2: क्या अंतर हुआ है वो आप शेयर करेंगे हमारे श्रोताओं से?
3: अब पान खाने वाले बहुत कम रह गए सर।
2: कम रह गए, अब क्या खाते हैं?
3: तो सिर्फ गुटखा मसाला खाने वाले हैं सर।
2: लेकिन गुटखा मसाला खाना ठीक नहीं होता?
3: पान की तो नाम है, लेकिन पान की बिक्री भी नहीं होता।
2: बिक्री नहीं है ना? एक समय हुआ करता था कि लोग जब खाना खा लेते थे तो पान खाने जाते थे,
3: खाने वालों की लाइन लगती थी,
2: लाइन लगती थी,
3: खाते थे।
2: और पान नुकसान नहीं करता, कहीं कहीं फायदा भी करता
3: नहीं,
2: है।
3: नहीं, पान बहुत अच्छा है सर, नुकसान नहीं करता, लेकिन गुटखा उठता तो नुकसान करता।
2: अगर पान में जर्दा का प्रयोग ना किया जाए, अगर पान में जर्दा का प्रयोग ना किया जाए तो कभी कभार पान खाने से कोई नुकसान नहीं होता?
3: नहीं नहीं नहीं,
2: सबसे खतरनाक उसमें पड़ा हुआ तंबाकू टोबैको है।
3: चलिए,
2: गाना कौन सा सुनेंगे ये बताइए? गाना कौन सा सुना दे?
3: गाना अजूबा पिक्चर का है सर।
2: अजूबा का कौन सा? अरे
3: यार,
2: अच्छा जी, भाभी जी की ख्वाहिश है। गाने का बोल कौन सा है? गाने का बोल बताइए।
3: मैं माफी कर गुड्डा, तू सोने की गुड़िया।
2: भाभी जी बात नहीं करेंगी क्या?
3: आप करेंगी, करेंगी सर, करेंगी करेंगी।
2: तो बात कराइए।
4: नमस्ते सर।
2: नमस्ते भाभी जी, क्या हाल चाल है आपके?
4: बढ़िया बढ़िया है सर, आप बताइए।
2: ये बताइए, अर्जुन जी आपको भी कभी पान खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं?
4: नहीं सर, हम पान नहीं खाते हैं।
2: अरे पान की दुकान करते हैं तो कभी

0: पान कभी खिलाया नहीं आपको इन्होंने?
1: नहीं, हम खाते ही नहीं, तो खिलाएंगे कहाँ से?
0: अच्छा, ऐसी बात है। अरे कभी तो स्वाद के लिए, कभी ऐसे ही खुशी में इन्होंने कहा हो।
1: मुँह लाल हो जाती है, दांत खराब हो जाती है, सब नहीं खाना चाहिए।
0: अच्छा, बात तो सही है आपकी। तो ये गाना जो आपने फरमाइश किया है, इसकी कोई खास वजह है?
1: नहीं सर, बस ऐसे ही मन कर दिया।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: सुनत हुई सखी, सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
8: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनते। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
7: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
8: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
9: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
10: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह के साथ। कार्यक्रम में बने रहिए 7376-8040 नंबर को डायल करके। और देखिए, हमारे एक कॉलर लाइन पर आ चुके हैं, हम इनसे बातें करेंगे। हेलो।
11: हेलो
10: जी, नाम बताएं अपना।
11: हमारा नाम हरिभजन है सर।
10: हरिभजन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
11: जी सर, देवड़ी बाजार।
10: देवड़ी बाजार से बोल रहे हैं, और बताइए क्या चल रहा है?
11: हाल चाल सब बढ़िया
10: है। सब बढ़िया है, और बताइए।
11: बस आप लोगों की याद आ रही, हमने कॉल लगा दी।
10: अच्छा जी।
11: अरे 9:30 कॉल लगा रहे हैं आपके पास।
10: 9:30 से लगा रहे थे और अभी लग गया। कौन सा गाना सुनेंगे आज?
11: हाँ सर,
10: गाना कौन सा सुनेंगे?
11: गाना कौन बता दिया।
10: पिक्चर का नाम बताइए
11: जी।
10: फिल्म का नाम बताइए।
11: फिल्म का नाम सर चाहत।
10: चाहत फिल्म का गीत सुनेंगे। चलिए ठीक है, है ना। चाहत बहुत सारी, हमारे यहाँ बहुत सारी फिल्में हैं। चाहत 1996 की है और चाहत नई वाली भी है। ठीक है जी।
11: सर एक एल्बम भी उनका।
10: अभी तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये फिल्मी सॉन्ग का कार्यक्रम है, इसमें आपको ये फिल्म के गाने सुनाने वाला कार्यक्रम है। चाहत फिल्म का गीत हम आपको सुना सकते हैं। अच्छा, दूसरा बताइए। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है, कॉल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

0: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का। लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
1: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
0: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
1: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
0: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
1: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
0: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की

0: मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
2: योग करिए, निरोग रहिए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या, अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह के साथ। एक और कॉलर लाइन पर हैं। हेलो,
4: हाँ नमस्ते सर, मैं यदुनाथ यादव नाका फैजाबाद अयोध्या से।
3: और बताइए यदुनाथ जी, क्या हाल चाल है आपके?
4: एकदम ठीक है सर।
3: गाना कौन सा सुनेंगे फटाफट बताइए
4: जी। सौतन सिंह का सुना दीजिए सर, लता जी की आवाज में है।
3: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
4: छोटी बहन है तभी मुझे सौतन।
3: कॉल करने के लिए धन्यवाद। सुनते हैं पसंद का गीत आपके।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: यह है

0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के

0: कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies.